103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: छह बजने वाले हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

अगर शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करो। इच्छाएं अनंत और मन की चंचल लहरों की तरह होती है। इन पर नियंत्रण और सही दिशा ही जीवन को सुख और सफलता का आधार बनती है। आध्यात्मिक चिंतन व सकारात्मक विचारों से आप अपने इच्छाओं को सही आकार दे सकते हैं, और जिस किसी ने अपनी इच्छाओं को काबू कर लिया वो अपने दुखों पर भी विजय हासिल कर लेता है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत गणपति जी की इस आराधना के साथ करेंगे।

भक्ति की शक्ति से इस संसार में मनुष्य हर प्रकार का मन वांछित फल पा सकता है। तो चलिए आइए हम सब मिलकर करें भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना।

राम कृष्ण। जिस किसी ने भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद पा लिया, माँ सदा ही उनके साथ रहती है, वो उनके सभी कष्टों को हर लेती है।

श्री कृष्ण की बांसुरी के तान पर गोपियां गवालों के साथ ये समस्त संसार भक्तिमय होकर झूमने लगता है।

श्रोता, इसी कृष्ण भजन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:40 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 होने को है। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय के बारे में। सात बजकर 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00 और 8:15 पर आप सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज। पर आप सुनेंगे गाने सुहाने प्रोग्राम और 9:10 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: 9:50 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। इन प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के शिमला केंद्र से किया जाता है। गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00 और 10:30 पर। आनंद लीजिए पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का। 11:05 पर आज आप सुनेंगे जय हिंद गीतमाला कार्यक्रम और 11:30 पर सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:00 आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सैनिकों के लिए और सुनो सखी का कार्यक्रम प्रसारण समय रहता है 12:30 पर। दोपहर 1:00 हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होती है शाम 5:10 से, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी भजन। युवा दोस्त अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे 5:25 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे 6:05 पर और मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:30 पर। किसान बागवान श्रोता 7:10 पर सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे देश गान। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9:00 सुनिएगा News@9। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मैंने प्यार क्यों किया 2005 में आई इस फिल्म के कुछ गाने। 9:30 पर सुनिएगा कारवां सुरों का कार्यक्रम और 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रात्रि 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोता, ये थी जानकारी हमारी केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सेवा भावना राष्ट्रस्य प्रगतेः बृहत्तमा प्रेरणा शक्तिः अस्ति। तेन प्रतिपादितं यत् प्रशासनस्य नवोन्मेषपूर्णाः योजनाः 25 कोटि नागरिकान् दारिद्र्यात् बहिः आनेतुं सहायकाः भवन्ति। वडनगरतः वाराणसी पर्यन्तं सेवायात्रायां गच्छद्भिः सेवायात्रिभिः सह कृते आभासीय संवादे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् पीएम किसान योजना भवतु उतवा पीएम सूर्यघर योजना एतादृश्यः अनेकाः योजनाः जनेभ्यः प्रत्यक्षं लाभं प्रदास्यन्ति तथा लाभं अंतिम जनपर्यन्तं प्रापयन्ति। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां पूर्णशक्त्या अग्रे नेतव्यम्। सः उक्तवान् यत् वयं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पिताः जनाः स्मः तथा विकसितभारतस्य निर्माणस्य सङ्कल्पेन अग्रे प्रस्थितवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजिते ऐषमः आरोग्य मंथने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः अष्टवर्षपूर्तिं तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्य अभियानस्य पञ्चवर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। कार्यक्रमे स्वास्थ्य सुरक्षायाः अंकीय स्वास्थ्यस्य च प्रमुखेषु पक्षेषु विविधाः विषयाधारिताः विचार विमर्शाः भविष्यन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन उक्तं यत् आरोग्य मन्थनम् इत्यस्मिन् भारतस्य अंकीय स्वास्थ्य व्यवस्थां स्वास्थ्य सुरक्षा तन्त्रञ्च अधिकं सुदृढीकर्तुम् उद्दिष्टानां विविध नूतनानां उपक्रमाणाम् आरम्भः अपि भविष्यति। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अद्य बेंगलुरु नगरे सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज इति सेवा प्रथम नवोन्मेष आह्वानम् उद्घाटयिष्यति। शिक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् अयम् उपक्रमः युवजनान् स्वसमुदायेषु विद्यमानानां समस्यानां समाधानोपायान् अन्वेष्टुं तान् परीक्षितुं परिष्कर्तुं च तथा व्यापकस्तरे कार्यान्वयनाय प्रोत्साहिष्यति। उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन्याः चतुर्थं संस्करणम् अद्य उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंच दिवसीयस्य अस्य आयोजनस्य उद्घाटनं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनानन्तरं एंटिग्वा बारबुडा इत्यस्य प्रधानमंत्रीं गैस्टन ब्राउन इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकर उक्तवान् यद् विकास सहकार क्षमता निर्माणं तथा जलवायु परिवर्तन संबद्धं सहयोगं च अग्रे वर्धते। सह राष्ट्रमण्डलस्य शासनाध्यक्षानां सम्मेलनस्य सफलतां प्रति भारतस्य दृढां प्रतिबद्धताम् अपि प्रकटितवान्। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेशस्य एतस्य समीपे दक्षिण ओडिसायाः च उपरि स्थितस्य गभीर न्यून दाब क्षेत्रस्य प्रभावेण ओडिसायाः विभिन्नेषु भागेषु प्रबलातिप्रबल वृष्टिः अनुवर्तते। अनेन संवेदनशीलेषु क्षेत्रेषु जलाप्लावः मार्गेषु यातायातस्य व्यवधानं तथा आप्लावन सदृशी स्थितिश्च उत्पन्नास्ति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की है और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया है। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में जारी इन मोटरसाइकिल रैलियों का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है, बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। भारत ने इजराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए अपना दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17th and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during the journey.
4: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
3: The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labeling or marketing. The FSSAI has proposed the amendment in the Food Safety and Standards Prohibition and Restrictions on Sale Regulations 2011 for analog paneer. This has been done to restrict manufacturing and sale of analog product so that consumers are not misled regarding the nature and composition of the product. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's expanding engagement with the global economy and its efforts to strengthen participation in global value chains and supply chains. Addressing the leadership dialogue at the 13th PAFI Annual Forum 2026 in New Delhi, Mr. Goyal said India is negotiating trade and economic partnerships from the position of an economy that is expected to grow into a $30 trillion economy. He underlined that India today negotiates with the world as a $4 trillion economy, while its economy on a purchasing power parity basis is around $20 trillion, making it the third largest in the world. The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Centre and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. Themed Ultimate Sourcing Begins Here. The exhibition will continue till September 29th, connecting the state's entrepreneurs, manufacturers and exporters directly with the global market. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Browne, on the sidelines of UN General Assembly in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India has reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary Wes C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UN General Assembly yesterday. In a statement, External Affairs Ministry said that India's approach combines political commitment with practical support. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing at third spot in 32.5 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000m event at Asian Games in 16 years. And that is the end of this news bulletin.
0: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहाने।
5: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला का प्रसारण। रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है हम सुबह सुहानी प्रोग्राम के साथ, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियों के साथ बेहतरीन सा संगीत भी, जो आपके दिन को खास बना देता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस सुविचार के साथ। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाओ, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर आपको आखिर में ज्यादा दर्द देता है। इसलिए कोशिश करें थोड़ा कम बोले और दूसरों से कम अपेक्षाएं रखें। इससे आप ही का जीवन थोड़ा आसान बनेगा और आपके जीवन में सुकून भी बरकरार रहेगा। चलिए, जब तक आप इसके बारे में सोचते हैं, तब तक आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं हम आपके दिलों को सुकून पहुंचाने वाला ये प्यारा सा गाना। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर, सुनते रहिए सुबह सुहानी।

जी हलसस बने हुए हैं आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, जहां इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। श्रोताओ, हर दिन कुछ खास लेकर आता है जिसमें छुपी रहती है कुछ ऐसी बातें जो इसकी विशेषता को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। तो चलिए बात करते हैं इतिहास की उन खास बातों की जो हमारे दिन को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। आपको बता दें कि 25 सितंबर 1524 के दिन वास्को डी गामा आखिरी बार पुर्तगाल के वायसराय बनकर भारत आए थे। जी हाँ, इसके बाद जो बात होने वाली है वो है 25 सितंबर 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत आज ही के दिन की गई थी। वहीं साल 2018 में महेंद्र सिंह धोनी अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में 200 वनडे मैचों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने, और 25 सितंबर 2020 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अस्तित्व में आया, जिसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की जगह ली थी। श्रोताओ, आपको बता दें कि साल 2020 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम हमारे बीच नहीं रहे। चलिए अब प्रोग्राम में बात करते हैं आज के दिन जन्म में कुछ खास शख्सियतों की। आपको बता दें कि 1916 में जन्म हुआ महान चिंतक और दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। जी हाँ, जिनकी हम आज जन जयंती मना रहे हैं। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने और देश की सांस्कृतिक जड़ों पर आधारित आर्थिक चिंतन का समर्थन किया। उन्होंने समाज के सबसे अंतिम और गरीब व्यक्ति तक विकास पर जोर दिया, जिन्होंने अंत्योदय जो कहा गया इस उनकी द्वारा चलाई गई इस योजना को।

विल, सुबह सुहानी प्रोग्राम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। फिलहाल रुकेंगे इस म्यूजिकल नंबर के लिए। आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर।

है सुबह के 7:23 और 5 सेकंड। श्रोताओं, हम सुबह सुहानी प्रोग्राम में आपसे साझा करते रहते हैं कुछ खास जानकारियाँ और जो आपके डे टू डे लाइफ में भी काम आ सके, जो आपकी लाइफ को कुछ आसान बना सके। श्रोताओं, जब कभी हम अपनी रूटीन लाइफ में काम करते करते थक जाते हैं या कभी हमारा मन जो है वो थोड़ा सा उदास होता है या फिर कहीं भी कुछ सुकून महसूस ना हो रहा हो, तो हर कोई अपने तरीके से खुद का मूड बदलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप कभी ऐसा महसूस करें तो फट से अपने म्यूजिक सिस्टम को ऑन करना और अपनी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कर लेना। यकीन मानिए, आपको खुद भी पता नहीं चलने वाला है कि आपका मन एकदम से कैसे बदल जाएगा। जी हाँ, यही तो है संगीत का जादू, जो हर किसी के सिर पर चढ़कर कभी ना कभी तो बोलता ही है। लिसनर, संगीत की धुन हमारे तनाव, चिंता और डिप्रेशन को तो कम करने का काम करती है, इसमें ध्यान लगाने की भी क्षमता हमारी बढ़ती है और हमारी याददाश्त भी बेहतर होती है। इतना ही नहीं, संगीत हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये हमारे दर्द को कम करता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ को सुधार करता है और बेहतर बनाता है। और हाँ, ये दूसरों तक बिना शब्दों के इस्तेमाल से हमारे भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से जो है वो दूसरों तक बयान कर पाता है, और ये बेहद ही खूबसूरत जो है वो जरिया रहता है अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाने का। इसीलिए तो कहा जाता है कि संगीत किसी थेरेपी से कम नहीं है और इसे सुबह शाम लेते रहना चाहिए। और अगर आप कभी भूल भी जाते हैं ना, तो हम तो है ही आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां हम आपके लिए प्ले करते रहते हैं कुछ प्यारे प्यारे से म्यूजिकल नंबर्स। तो ऐसा ही प्यारा सा गाना जो आपके दिलों को सुकून पहुंचाने वाला है, आप सभी के रेडियो सेट्स पर हम भेज रहे हैं।

जी हाँ, बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, जहां आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख समाचारों की। जी हाँ श्रोताओ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी की शुरुआत आज से ग्रेटर नोएडा में होने वाली है, जिसकी इस 5 दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बताया गया कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी लगातार भागीदारी बढ़ा रहा है और भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यानी कि विश्व में 5वें नंबर पर सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्थाओं में से एक में भारत का नाम शामिल है। बात करें खेल जगत की, तो आपको बता दें कि एशियाई खेलों में भारत का जो दबदबा बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। और कबड्डी की बात करें तो भारतीय पुरुष टीम ने चीन को 37-21 से हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं एथलेटिक्स की बात करें तो भारत ने 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता और सीमा ने 10,000 मीटर में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। वहीं हॉकी की बात करें तो भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को 8-2 से करारी शिकस्त दी। वहीं भारोत्तोलक में मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया है। तो चलिए, उम्मीद यही है कि भारत इसी तरह से खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखने वाला है। फिलहाल आप सभी को सुनवा रहे हैं प्रोग्राम में नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और चलते चलते अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत लगभग 17 से 19 राज्यों में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की जो है मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आज यहां पर ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है और आने वाले दिनों में जो है वो 26 से 27 सितंबर तक जो है वो एक नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, जिससे ज़िलों में बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना है। चलिए श्रोताओं, जाते जाते मॉनसून थोड़ी बहुत बारिश तो करेगा ही और साथ में थोड़ी तेज हवाएं चल सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही एंजॉय करते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के प्रोग्राम।

0: वेल, हम अपने इतने प्यारे प्यारे से लिसनर्स को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल तो समय जो है वो सुबह सुहानी प्रोग्राम का समाप्त हो रहा है, लेकिन आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।
1: सुबह सुहानी
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 26वां अध्याय, राजनिष्ठा और शुश्रूषा। शुद्ध राजनिष्ठा जितनी मैंने अपने में अनुभव की है उतनी शायद ही दूसरे में देखी हो। मैं देख सकता हूं कि इस राजनिष्ठा का मूल सत्य पर मेरा स्वाभाविक प्रेम था। राजनिष्ठा का अथवा दूसरी किसी वस्तु का स्वांग मुझसे कभी भरा ही न जा सका। नेटाल में जब मैं किसी सभा में जाता तो वहां गॉड सेव द किंग यानी ईश्वर राजा की रक्षा करें गीत अवश्य गाया जाता था। मैंने अनुभव किया कि मुझे भी उसे गाना चाहिए। ब्रिटिश राजनीति में दोष तो मैं तब भी देखता था, फिर भी कुल मिलाकर मुझे वह नीति अच्छी लगती थी। उस समय मैं मानता था कि ब्रिटिश शासन और शासकों का रुख कुल मिलाकर जनता का पोषण करने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में मैं इससे उल्टी नीति देखता था, वर्ण द्वेष देखता था। मैं मानता था कि यह क्षणिक और स्थानिक है। इस कारण राजनिष्ठा में मैं अंग्रेजों से भी आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करता था। मैंने लगन के साथ मेहनत करके अंग्रेजों के राष्ट्रगीत गॉड सेव द किंग की लय सीख ली थी। जब वह सभाओं में गाया जाता तो मैं अपना सुर उसमें मिला दिया करता था, और जो भी अवसर आडंबर के बिना राजनिष्ठा प्रदर्शित करने के आते उनमें मैं सम्मिलित होता था। इस राजनिष्ठा को अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी भुलाया नहीं। इससे व्यक्तिगत लाभ उठाने का मैंने कभी विचार तक नहीं किया। राजभक्ति को ऋण समझकर मैंने सदा ही उसे चुकाया है। मैं जब हिंदुस्तान आया तब महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली यानी हीरक जयंती की तैयारियां चल रही थीं। राजकोट में भी एक समिति बनी। मुझे उसका निमंत्रण मिला। मैंने उसे स्वीकार किया। उसमें मुझे दंभ की गंध आई। मैंने देखा कि उसमें दिखावा बहुत होता है। यह देखकर मुझे दुख हुआ। समिति में रहने या ना रहने का प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ। अंत में मैंने निश्चय किया कि अपने कर्तव्य का पालन करके संतोष मानूं। एक सुझाव यह था कि वृक्षारोपण किया जाए। इसमें मुझे दंभ दिखाई पड़ा। ऐसा जान पड़ा कि वृक्षारोपण केवल साहबों को खुश करने के लिए हो रहा है। मैंने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि वृक्षारोपण के लिए कोई विवश नहीं करता। वह एक सुझाव मात्र है। वृक्ष लगाने हो तो पूरे दिल से लगाने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि जब मैं ऐसा कहता था तो लोग मेरी बात को हंसी में उड़ा देते थे। अपने हिस्से का पेड़ मैंने अच्छी तरह लगाया और वह पल पुसकर बढ़ा। इतना मुझे याद है। गॉड सेव द किंग गीत मैं अपने परिवार के बालकों को सिखाता था। मुझे याद है कि मैंने उसे ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को सिखाया था, लेकिन वह यही अवसर था अथवा 7वें एडवर्ड के राज्य आरोहण का अवसर था, सो मुझे ठीक याद नहीं है। आगे चलकर मुझे यह गीत गाना खटका। जैसे जैसे अहिंसा संबंधी विचार मेरे मन में दृढ़ होते गए, वैसे वैसे मैं अपनी वाणी और विचारों पर अधिक निगरानी रखने लगा। उस गीत में दो पंक्तियां ये भी हैं, उसके शत्रुओं का नाश कर, उसके षड्यंत्रों को विफल कर। इन्हें गाना मुझे खटका। अपने मित्र डॉक्टर बूथ को मैंने अपनी यह कठिनाई बताई।
उन्होंने भी स्वीकार किया कि यह गाना अहिंसक मनुष्य को शोभा नहीं देता। शत्रु कहलाने वाले लोग दगा ही करेंगे, यह कैसे मान लिया जाए? यह कैसे कहा जा सकता है कि जिन्हें हमने अपने शत्रु माना वे बुरे ही होंगे? ईश्वर से तो न्याय ही मांगा जा सकता है। डॉक्टर बूथ ने इस दलील को माना। उन्होंने अपने समाज में गाने के लिए एक नए ही गीत की रचना की। डॉक्टर बूथ का विशेष परिचय हम आगे करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक स्वर संजीव कुमार, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये राम भजन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे राम भजन 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुने देश गान।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सबको धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं यह ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
8: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
9: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की

0: महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजन बैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra for second day today. Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today with video conferencing with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. More from our correspondent.
7: The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experience from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
6: The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step toward grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during their journey. Today marks 12 years of Make in India. It was on this day in 2014 when the initiative was launched with the ambition of becoming a global hub for manufacturing, design and innovation. The initiative has transformed India's manufacturing landscape by expanding production, investment and capabilities across industries. We have a report.
8: Over the years, Make in India has opened new opportunities for businesses and investors to participate in India's manufacturing journey. The initiative has subsequently been expanded under Make in India 2.0. The initiative now focuses on 27 sectors, which include 15 in manufacturing and 12 in services. Guided by minimum government, maximum governance, it has also sought to modernize processes and policies. Under the initiative, India's electronics production increased nearly sevenfold from 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to over 13 lakh crore in 2025-26. During this period, Indian Railways manufactured nearly 55,000 coaches over 2014-2024. Further, under the Make in India initiative, country's indigenous defense production increased from 46,429 crore rupees in 2014-15 to a record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. The initiative now goes beyond producing more goods and focuses on building the skill

0: at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
2: वन जीरो 3.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हां, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम गाने सुहाने। आज के इस प्रोग्राम में आपसे होगी कुछ मीठी मीठी सी बातें और साथ ही साथ आपको ताज़ा करवाएंगे कुछ ऐसे दौर के गीतों की जो आपके दिलों के बेहद ही करीब है। जी हाँ, कुछ ऐसे गाने जो बेहद आपको पुराने दौर में ले जाने वाले हैं और आपसे जो है वो आपको कुछ ना कुछ उन गानों से जुड़ी हुई मीठी यादें जो है वो ज़रूर ही आने वाली है। लेकिन आपको उस शख्स के बारे में बताने से पहले आपके लिए सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत और आप तब तक पहचानिए कि आज इस प्रोग्राम में हम किन के बारे में आपसे बात करने वाले हैं।

जी हाँ लिसनर्स, इस वक्त आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गाने सुहानी प्रोग्राम। और आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाने वाले हैं 90 के दशक के बेहद ही पॉपुलर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए हुए कुछ गाने, जो दशकों से सुनने के बाद भी उतने ही रोमांटिक और अपने लगते हैं जितने कि इनके रिलीज के वक्त हमें लगते थे। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगरों में से एक रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। जी हाँ, प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ ये अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी रहे हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम को 6 बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन्हें जो है वो तेलुगु सिने का नंदी पुरस्कार दिया गया है। और एक समय ऐसा भी था कि अभिनेता सलमान खान जब नए नए फिल्मों में आए थे तो कई सालों तक एसपी बाला सुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ समझा जाता था। फिल्म मैंने प्यार किया के गाने, साजन और फिर हम आपके हैं कौन, इन सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी आवाज़ दी। गाने सुहानी प्रोग्राम में बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। अभी हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में सागर फिल्म से ये गीत। आनंद लेते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। प्रोग्राम चल रहा है गाने सुहाने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
2: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
3: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
2: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहाने प्रोग्राम, और आपको हम आज सुनवा रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम के गाए हुए कुछ गीत। श्रोताओ, आपको बताना चाहेंगे कि SP बालासुब्रमण्यम का जन्म 4 जून 1946 को मद्रास में हुआ था, और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसी दौरान उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ली। आपको बता दें कि SP बालासुब्रमण्यम ने 15 दिसंबर 1967 को तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से अपने गानों की शुरुआत की। और आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि सलमान खान के साथ ही साथ साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की आवाज़ भी एक वक्त उन्हें माना जाता था।
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और सुन रहे हैं गानी सुहानी प्रोग्राम। श्रोता SB बाला सुब्रमण्यम हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से एक है जिन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं को के गानों को अपनी आवाज़ें दी और उन्हें हमेशा ही जो है वो फिल्म एक दूजे के लिए और मैंने प्यार किया के गानों से उन्होंने जो है वो खूब शोहरत हासिल की और वो रातों रात जो है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। आपको बता दें कि SB बाला सुब्रमण्यम ने 15 सालों तक जो है वो हिंदी फिल्मों से दूरी बनाए रखी और साल 2013 में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने से दोबारा से फिल्मी जो हिंदी फिल्मों में गाने की जो है वो शुरुआत की। आपको बता दें कि उन्होंने एक दूजे के लिए, मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल, हम आपके हैं कौन और रोज़ा जैसी पॉपुलर फिल्मों में गाने गाए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज़ में एक और बेहद प्यारा सा गाना।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी हाँ श्रोताओ, गाने सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, आपको बता दें कि SV बाला सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक, संगीतकार, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ही एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड और अर्जुन सराज जैसे कई अभिनेताओं के लिए वॉइस ओवर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म दशावतार के तेलुगु वर्जन के लिए उन्होंने कमल हसन के सात किरदारों को अपनी आवाज से वॉइस ओवर दिया। उन्होंने बूढ़ी औरत के किरदार को भी अपनी आवाज दी। आपको बता दें कि SV बाला सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा साल 2001 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया। वहीं पिछले 5 दशक में करीब 16,000 भाषाओं में उन्होंने जो है वो 40,000 से भी अधिक गाने गाए। और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यसुदास के बाद SV बाला सुब्रमण्यम बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड पाने वाले दूसरे सिंगर थे। यसुदास को उनके करियर के दौरान 8 नेशनल अवार्ड जीते, जबकि SV बाला सुब्रमण्यम ने 6 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। तो चलिए आपके लिए सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म रोजा का ये।

मरियम के बारे में जो आज 25 सितंबर 2020 के दिन ही इस दुनिया से अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन दोस्तों, पूरे भारत में घर घर पहचाने जाने वाले उनकी मधुर आवाज़ और संगीत से दशकों तक श्रोताओं को उनके द्वारा मंत्रमुग्ध किया गया। आज वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़, अपने गानों के जरिए हमेशा ही वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म एक दूजे का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोतो, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जनसेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। DS मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में हमारे साथ SP सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
2: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सेचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
1: जी,
2: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
1: जी,
2: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से SDM से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा, और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
1: जी,
2: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
1: जी।
2: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गाँव में हो गई है,

0: इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
1: मिश्रा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
2: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गांव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम कि जो बुनियादी सुविधाएं गांव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल के जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खासतौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गाँव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहने खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती है इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है। ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे, जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, ये मनरेगा के तौर पर एक योजना लाई गई।
1: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गाँव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता

0: विषय नहीं थी बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएं?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, माने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, वही उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तित्व सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है कि रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
0: पीड़ा में रहती थी,
1: पीड़ा में रहती थी। तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस, यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
0: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसमें चुनौतियां थीं और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों, खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है। और गाँव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है। इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गाँव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गाँव में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गाँव में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है। महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले, तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
0: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
3: देखिए, पानी पहुंचाना एक है, लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था, लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के, वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी है जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध दे करके इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो, और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई, और हमें लगता है कि 70% से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी, उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी हुए, उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांव की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है, वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा, तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियरल चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी एक खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, और और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आगे, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में

0: है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा। मैंने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, देखे छोटे बच्चे थे, हम ढिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
0: लालटेन में पढ़ते थे। अब लालटेन ढिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था। जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आएंगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे, उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली से चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो। बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो PSC है वो गांव के PSC को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी, और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी
0: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे। उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई। तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी। पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचता बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं। वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
2: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहाँ पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी, अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
3: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो, चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं, तो वो अपनी साइकिल पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
2: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे। तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण

0: पूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है। अब तो आज वो सारा सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी। आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखिए जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेंडी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, तो घरौनी कहते हैं घर से हो गया। इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर लेते,
1: टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं। तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं, उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते हैं। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया। हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: तो मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
2: बिल्कुल,
1: PVTGs के लिए
0: नहीं, PVTG देखिए इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे PVTG जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल में जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी, तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से, पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
0: इसमें जोड़ूंगा जी, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट विलेज,
0: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उपयोग करते थे जी। जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है,
0: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन है कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीवुड अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहाँ पीने का पानी हो, वहाँ स्वास्थ्य का हर एक सारी सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हो, लद्दाख का हो, या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है, उन सारे गांवों के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।
2: ये सारे गांव की सोच का, एक गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अब उनके रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई, तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, वो बहुत ही आगे बढ़ रही है, और इसका बहुत फायदा मिल रहा है। वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहाँ नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए, ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके, और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है। हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
1: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांव में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए आपको एक जानकारी दे दें। श्रोताओ, इस रविवार दिनांक 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में प्रसारित होने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा गठिया कारण व बचाव। इस संबंध में प्रश्न जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391 पर। विशेषज्ञ के तौर पर आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर सुजीत रैना, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय महाविद्यालय टांडा, हिमाचल प्रदेश। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या अपने प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। जी हाँ, आप ये कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी इसे आप सुन सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से दोहरा दे 01892224391। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर देशभर में रोक लगाने का दिया प्रस्ताव। चंबा की धाविका सीमा ने एशियाई खेलों में जीता कांस्य पदक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। आज विश्व पर्यटन दिवस, धर्मशाला में एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक किया जाएगा पर्यटकों का स्वागत। और पांगी को पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने के बाद स्थानीय किसानों का जौ की खेती की तरफ बढ़ा रुझान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देशभर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के तहत रखा है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की धाविका सीमा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे भारत देश को गौरवान्वित किया है। सीमा ने जापान के आईएची नागोया में चल रही 20वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में ये उपलब्धि हासिल की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए सीमा को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीमा की इस उपलब्धि पर करियावाड के पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि ये देश के लिए गौरवमयी पल है।
1: एशियन गेम 2026 जो कि जापान के नगोया में हो रही है, उस प्रतियोगिता में आज 10,000 मीटर की दौड़ में सीमा ने कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत का नाम जो वो दुनिया भर में रोशन किया है। इसके लिए मैं सीमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो प्रतियोगिता हुई है सीनियर लेवल की वुमेन चैंपियनशिप 2026 में जो ये हुई है 10,000 मीटर की दौड़, इसमें ये मेडल भारत के लिए 16 सालों के बाद आया है। जो वो इस कोई मेडल भारत को आया था, 16 साल तक कोई भी मेडल 10,000 मीटर दौड़ में वुमेन में एशिया लेवल पे नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए। मैं इसके लिए सीमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे चंबा की तरफ से। और
0: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा घोषित आधिकारिक थीम डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यटन का पुनर्निर्माण है। इस बीच विश्व पर्यटन दिवस पर कांगड़ा जिले में पर्यटन विभाग और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि एयरपोर्ट पहुंचने वाले देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैक्लोडगंज के मुख्य चौक पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पर्यटकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विनय धीमान ने बताया कि हाल ही में आयोजित गुलेर कॉन्क्लेव में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है।
2: वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो एक टूरिज्म वीक का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसमें भी जो है वो इनके जो रिस्पेक्टिव टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं। 21 तारीख को गुलेर कंक्लेव हुई है, उसमें हेरिटेज जो टूरिज्म है उसको डेवलप करने की बात हुई, जिसमें कि प्रागपुर, गुलेर और मसरूर एरिया को इंटीग्रेट करने की है प्लानिंग रहेगी। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हमारी मदद करेंगे और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे, और आने वाले समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ हम जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी कोलैबोरेट करने वाले हैं।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल NH-205 पर कल्लर बाला गांव से नौणी चौक तक चल रहे फोरलेन के कार्य का निरीक्षण किया। NHAI के अधिकारियों ने राज्यपाल को फोरलेन परियोजना की समग्र प्रगति के बारे में अवगत करवाया। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एम्स बिलासपुर के आसपास आवागमन और कनेक्टिविटी से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर घंडल के समीप कल HRTC की इलेक्ट्रिक बस और कार की टक्कर में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोलन जिले की अर्की तहसील के फांजी गांव के दयानंद, उनकी पत्नी हेमलता और माता विद्या देवी के रूप में हुई है, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को उनके उत्पाद का उचित व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। इसके तहत घाटी में प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ का समर्थन मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटी में इस वर्ष बड़ी मात्रा में किसानों ने अन्य नकदी फसलों को छोड़कर जौ को नकदी फसल के रूप में उगाया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
5: वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों ने सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 99.74 क्विंटल जौ की उपज बेची, जिसके लिए सरकार द्वारा उन्हें करीब 6,00,000 रुपये का भुगतान किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ को 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। घाटी में वर्ष 2026 के दौरान अब तक लगभग 152 किसानों ने 362 क्विंटल जौ को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए कृषि विभाग के पास अपना पंजीकरण करवा दिया है और इसकी मात्रा लगभग 400 क्विंटल पहुंचने की संभावना है। सरकार के निर्णय से पांगी घाटी में किसानों को न केवल अपनी कृषि उपज का सही दाम मिल रहा है बल्कि उनकी आर्थिकी भी लगातार मजबूत हो रही है। यही कारण है कि पांगी घाटी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 4 गुना जो कि सरकारी खरीद होने की संभावना है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में गर्ज व चमक के साथ बारिश, अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, मेरिट से आए आरक्षित कैंडिडेट को मिलेगी जनरल सीट, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 के आदेशों में किया संशोधन। एशियाई खेलों में चंबा की सीमा द्वारा हासिल की गई उपलब्धि भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल की बेटी सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में देश को 16 वर्ष बाद दिलाया पदक। दैनिक जागरण के शब्द हैं, दौड़ रही थी बेटी, माँ की आंख से छलके आंसू। दैनिक भास्कर की खबर है, मुख्यमंत्री सुक्खू पर आरोप लगाने पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा पर केस। मौसम पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, 26 से 28 सितंबर तक होगी भारी बारिश, 27 को रहेगा ऑरेंज अलर्ट, मॉनसून से अब तक 360 मौतें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का दिया प्रस्ताव। चंबा की धाविका सीमा ने एशियाई खेलों में जीता कांस्य पदक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। आज विश्व पर्यटन दिवस धर्मशाला में एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक किया जाएगा पर्यटकों का स्वागत और पांगी को पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने के बाद स्थानीय किसानों का जौ की खेती की तरफ बढ़ा रुझान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
6: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
7: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
6: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
7: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: ₹103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त माया। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं हम फिल्म देवदास के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल की। गीत के बोल लिखे हैं नुसरत बद्र ने, संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग 2 से। गीतकार हैं साजिद वाजिद, संगीतकार हैं समीर।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गीतों का कारवां, श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ओम शांति ओम सी।

इस गीत को शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना ने मिलकर गाया है। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गीतों का कारवां। तो कार्यक्रम में अब ताल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है से। सुरीली आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश व साथी की आवाजों में।

श्रोताओं, पहाड़ों के सुर, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए विपिन कुमार का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार अरे लेके जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के तहत रखा है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की धाविका सीमा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि ने पूरे भारत देश को गौरवान्वित किया है। सीमा ने जापान के आईएची नागोया में चल रही 20वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में ये उपलब्धि हासिल की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए सीमा को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीमा की इस उपलब्धि पर करियावाड़ के पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि ये देश के लिए गौरवमयी पल है।
1: एशियन गेम 2026 जो कि जापान के नगोया में हो रही है और उस प्रतियोगिता में आज 10,000 मीटर की दौड़ में सीमा ने कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत का नाम जो वो दुनिया भर में रोशन किया है, इसके लिए मैं सीमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो प्रतियोगिता हुई है सीनियर लेवल की वुमेन चैंपियनशिप 2026 में जो ये हुई है 10,000 मीटर की दौड़, इसमें ये मेडल भारत के लिए 16 सालों के बाद आया है। जो वो इस कोई मेडल भारत को आया था 16 साल तक कोई भी मेडल 10,000 मीटर दौड़ में वुमेन में एशिया लेवल पे नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए। मैं इसके लिए सीमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे चंबा की तरफ से। और
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कल NH 205 पर कलर बाला गांव से नौणी चौक तक चल रहे फोरलेन के कार्य का निरीक्षण किया। NHAI के अधिकारियों ने राज्यपाल को फोरलेन परियोजना की समग्र प्रगति के बारे में अवगत करवाया। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एम्स बिलासपुर के आसपास आवागमन और कनेक्टिविटी से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा घोषित आधिकारिक थीम डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यटन का पुनर्निर्माण है। इस बीच विश्व पर्यटन दिवस पर कांगड़ा जिले में पर्यटन विभाग और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय दिवान ने बताया कि एयरपोर्ट पहुंचने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैक्लोडगंज के मुख्य चौक पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें पर्यटकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विनय दिवान ने बताया कि हाल ही में आयोजित गुलेर कॉन्क्लेव में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को उनके उत्पाद का उचित व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। इसके तहत घाटी में प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ का समर्थन मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटी में इस वर्ष बड़ी मात्रा में किसानों ने अन्य नकदी फसलों को छोड़कर जौ को नकदी फसल के रूप में उगाया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों ने सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 99.74 क्विंटल जौ की उपज बेची, जिसके लिए सरकार द्वारा उन्हें करीब 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ को 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। घाटी में वर्ष 2026 के दौरान अब तक लगभग 152 किसानों ने 362 क्विंटल जौ को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए कृषि विभाग के पास अपना पंजीकरण करवा दिया है और इसकी मात्रा लगभग 400 क्विंटल तक पहुंचने की संभावना है। सरकार के निर्णय से पांगी घाटी में किसानों को न केवल अपनी कृषि उपज का सही दाम मिल रहा है बल्कि उनकी आर्थिकी भी लगातार मजबूत हो रही है। यही कारण है कि पांगी घाटी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 4 गुना जो कि सरकारी खरीद होने की संभावना है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सर्दियों में डाक सेवा को सुचारू रखने के लिए ड्रोन के जरिए दूरदराज की शाखाओं तक डाक पहुंचाई जाएगी। कल केलांग से ड्रोन द्वारा तांदी की 4 शाखा डाकघरों की डाक को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। ड्रोन ने 6.2 किलोमीटर की हवाई दूरी महज 11 मिनट में पूरी की। तांदी डाकघर के अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों तक डाक सेवा निर्बाध पहुंचाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला।

कार्यक्रम का पहला गीत देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में। गीतकार पीके मिश्रा, संगीतकार ए आर रहमान।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत। गायक हैं महालक्ष्मी अय्यर, गीतकार प्रसून जोशी, संगीतकार जतिन ललित।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म परदेसी बाबू से। गायक हैं आनंद राज आनंद, गीतकार और संगीतकार भी आनंद राज आनंद का।

ये देशभक्ति गीत हमने लिया है फिल्म दिल जले से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और आदित्य नारायण, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार अनु मलिक।

श्रोता, कार्यक्रम के आखिर में सरफरोश फिल्म का ये देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गायक सोनू निगम और रूप कुमार राठौर, गीतकार इसरार अंसारी, संगीतकार जतिन ललित।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दीपमाला, माफ कीजिएगा, जय हिंद गीतमाला, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि।

0: भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
3: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
3: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
3: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
3: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
3: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
3: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
3: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
3: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
3: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
3: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
3: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
3: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
3: अच्छा
7: जी।
3: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
3: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
3: गिजू भाई के अनुसार,
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
3: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आप सभी से साझा कर दे। श्रोताओ, इस रविवार दिनांक 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच प्रसारित होने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा गठिया, कारण व बचाव। इस विषय से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 27 सितंबर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित रहेंगे डॉक्टर सुजीत रैना, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय महाविद्यालय टांडा हिमाचल प्रदेश। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे धर्मशाला FM 103.4 MHz पर और कार्यक्रम प्रसारित होगा 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। इसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं 01892224391। सूचना समाप्त हुई। एक 103.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हाँ, दोपहर के 12 बजे हैं और इस वक्त हम रोजाना आप सभी के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह हाजिर हैं हम आप सभी का मनोरंजन करने के लिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सैनिकों के लिए के साथ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आपकी कसम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

सैनिक भाई, इस वक्त आप सुन रहे हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रफू चक्र फिल्म से कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत। इस फिल्म में संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। फिल्म है आए दिन बहार के।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनी भाइयों कार्यक्रम में अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

सैनी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में जंगली फिल्म से ये गाना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए पेश है सुनो सखी कार्यक्रम।

स्टूडियोज की घड़ी में ठीक 12:30 हुए हैं और हम भी हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम सुनो सखी लेकर। तो सुनो सखी कार्यक्रम में आप सभी सखियों का हार्दिक अभिनंदन। आज शुक्रवार है और आप सभी जानती हैं कि हमारा आज का अंक रहता है उड़ान का। तो आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी माया। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर दिन की तरह हम जानकारी भी साझा करेंगे, गीत भी सुनवाएंगे और कार्यक्रम के आखिर में चलेंगे हम रसोई में। रसोई से याद आया सखियों कि हमारी सखियां भी इस वक्त रसोई में होंगी और तैयारी कर रही होंगी खाना बनाने की। तो चलिए काम भी करते रहिए, खाना भी बनाते रहिए और कार्यक्रम सुनने का आनंद भी लेते रहिए। तो कार्यक्रम में विषय की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ सखियों, कुछ पाने की जिद, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, लगन और हौसला हो तो उम्र मायने नहीं रखती है। मायने रखता है जुनून। अगर मन में कुछ करने का जुनून

और मेहनत मायने रखती है। जी हाँ से क्यों, फाल्गुनी नायर हमारे देश भारत की एक प्रसिद्ध महिला उद्यमी है। इन्होंने सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल के सामान बेचने वाली कंपनी नायका की स्थापना की। इनके जीवन की कहानी हम महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो करते हैं इनके जीवन पर बातें, पर इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी

0: आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुखियो, आप जुड़ी हैं इस वक्त आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रही हैं कार्यक्रम सुनो सखी। तो गीत से पहले और संदेश से पहले हमारी बात हो रही थी फाल्गुनी नायर के जीवन की। फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का अपना कारोबार था। वो बचपन से ही फाल्गुनी नायर ने परिवार में व्यापार और मेहनत देखी, इससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। फाल्गुनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, रुचि रखती थी और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से वाणिज्य और अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM से प्रबंधन की शिक्षा पूरी की। सखी, जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सलाहकार के रूप में की। इसके बाद उन्होंने कोटक महिंद्रा समूह में काम किया। लगभग 18-19 वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किया। इस दौरान उन्होंने व्यापार, बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में बहुत अनुभव प्राप्त किया और अपने हर काम में मेहनत और लगन से आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उन्होंने एक सफल महिला अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि उनके पास सखियो अच्छी नौकरी थी, लेकिन उनके मन में अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना था। वे जीवन में कुछ नया करना चाहती थी। वर्ष 2012 में उन्होंने नायका कंपनी की स्थापना की। उस समय उनकी उम्र लगभग 49 वर्ष थी। नायका एक ऐसी कंपनी है सखियो, जिसके माध्यम से हम लोग सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल से जुड़े उत्पाद खरीद सकते हैं। उन्होंने शुरुआत में ऑनलाइन सामान बेचने का काम शुरू किया। उस समय ऑनलाइन सामान बेचने का इतना चलन नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके रास्ते में कई चुनौतियाँ आई, फिर भी उनके उत्पाद इतने अच्छे थे कि धीरे धीरे कंपनी लोकप्रिय होने लगी। बाद में नायका ने अपने स्टोर भी खोले और फैशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री भी शुरू की। फाल्गुनी नायर ने अपनी मेहनत और लगन से नायका को एक प्रसिद्ध कंपनी बनाया। सखियो, आज वे नायका की संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। वे कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में भी कार्यरत हैं। 10 नवंबर 2021 में नायका की मूल कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई। ऐतिहासिक IPO आया, जिसके बाद फाल्गुनी नायर हमारे देश की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई। 2021 में उन्हें मोस्ट स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इस सम्मान से नवाजा गया और 2025 में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सखियो, इनके जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने सपनों पर विश्वास रखना है, कठिनाइयों से घबराना नहीं है, अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। कुछ भी करने के लिए देखो उम्र मायने नहीं रखती है। उस वक्त अगर वे अपनी उम्र को देखती तो शायद ही अपने सपनों को साकार कर पाती। इसलिए उम्र नहीं, हौसला और जुनून मायने रखता है। तो कार्यक्रम में आगे भी आपसे जानकारी साझा करेंगे, पर फिर चलते हैं मनोरंजन की तरफ और भेजते हैं आपके रेडियो सेट्स पर ये खूबसूरत सा गीत।

एक बार फिर से स्वागत सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में। अब कार्यक्रम में बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। सखियों, हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर देश की सेवा की और समाज को एक नई दिशा दिखाई है। ऐसे ही महान व्यक्तियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे एक महान विचारक, समाजसेवी, कुशल राजनीतिज्ञ और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी जयंती 25 सितंबर यानी आज के दिन मनाई जाती है। सखियों, आज के दिन हम उनके योगदान को याद करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनका बचपन कठिनाई में होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। वे बचपन से ही होशियार, मेहनती और अनुशासन प्रिय थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने समाज और देश की सेवा करने का रास्ता चुना। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। उनका मानना था सखियों कि देश का विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। वे गरीबों, किसानों, मजदूरों और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण को बहुत महत्व देते थे। वे

थे कि भारत का विकास अपनी संस्कृति, परंपराओं और मानवीय मूल्यों के आधार पर हो और समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान अवसर मिले। आज के दिन हमें उनके विचारों से यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने देश, समाज और ज़रूरतमंद लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और समाज में एकता, भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो अब कार्यक्रम में हमें भी आगे बढ़ना है और लेना है एक और खूबसूरत सा गीत।

तो सखियों, बस ऐसे ही जानकारी साझा करते करते, गीत सुनते सुनते हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, जहां हम बात करते हैं खाने पीने की। तो चलते हैं रसोई की तरफ और बनाते हैं एक अच्छा सा व्यंजन। जी हाँ सखियों, आज हम बात करेंगे चकरी बनाने की विधि के बारे में। चकरी एक स्वादिष्ट कुरकुरा और चटपटा नाश्ता है, इसे चाय के साथ खाना पसंद किया जाता है। तो चकरी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा 1 कप, बेसन 1/2 कप, थोड़े से तेल, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और तेल। सबसे पहले चावल का आटा और बेसन एक बड़े बर्तन में डालें। इसमें हल्दी, नमक, अजवाइन, तिल, लाल मिर्च पाउडर करके अच्छी तरह से ये मिला लें। डाल करके मक्खन या तेल डाल करके पहले मिला लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते इसका नरम आटा गूँथ लें। आटा न सख्त होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। चकरी बनाने वाली मशीन में आटा भरें। मशीन की सहायता से गोल गोल चकरी बनाकर एक साफ प्लेट पर रखें। मशीन नहीं है तो किसी तेल वाले खाली पैकेट में डाल करके आटा नीचे से थोड़ा सा कट लगाकर भी हम चकरी घर में बना सकते हैं। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो मध्यम आंच पर इन सभी चकरियों को सुनहरा या कुरकुरा होने तक तल लें। ठंडी होने पर चाय के साथ खाने में इनका मतलब अपना ही इनका स्वाद है, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। इनको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में थोड़े वक्त के लिए स्टोर करके भी हम लोग रख सकते हैं। तो सोचिए चकरी बनाने के बारे में और साथ में सुनिए ये प्यारा सा एक और गीत।

इसी गीत के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते बता देते हैं कि तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का। प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। माया को कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए, इसी आशा के साथ कि आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक सिक्योर नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार अरेले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृहमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी

0: विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपेई के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law, and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav launched the workshop on capacity enhancement for effective forest management project in New Delhi today. On the occasion, the minister said the project holds significant potential for enhancing technical and field level capabilities in forest fire management, biodiversity, conservation and climate action. The project has an outlay of over 537 crore rupees, including a contribution of over 440 crore rupees by Japan International Cooperation Agency. The project is being implemented over 7 years and involves all states in India. The government has said 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0. It is a centrally sponsored scheme providing placement-linked skill training to poor rural youth. The Rural Development Ministry said all the 31 participating states and UTs have been allocated more than 9 lakh targets under the scheme for a period of 2 years. The Intermeteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbh today. According to the Weather Agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana during the day. Indian men's and women's kabaddi teams have entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. The women defeated Nepal 48-24, while the men outplayed Thailand 66-28, keeping their unbeaten run intact. And with that, we end this news bulletin.
4: FM band 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है. 1:10 हुए हैं. अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे.

जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के कमेंट्स आ गए हैं। हमने जो पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और किन्होंने गाया है, सभी ने सही जवाब दिया है। धर्मात्मा फिल्म का गीत है, मुकेश और कंचन की आवाज़ें हैं, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मैं फिरोज खान साहब को स्टाइलिश आइकन कहूँगा। ये हमारे एक श्रोता का कहना है कि उनकी मस्त चाल, संवाद बोलने का दिलकश अंदाज, काउबॉय की इमेज वाले फिरोज खान साहब के क्या कहने। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान जी की अभिनय क्षमता बड़ी गहरी है, रोमांटिक, गंभीर, कॉमेडी, स्टाइलिश, सभी कुछ उसकी उनकी फिल्मों में पाया जाता है। उनको शत-शत नमन। बिल्कुल। एक और श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान हिंदी सिनेमा के ऐसे बहुमुखी कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, दमदार आवाज और अनोखी शैली ने उन्हें अपने दौर का विशिष्ट अभिनेता बनाया। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। अपने आधुनिक अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और फैशन के प्रति खास पसंद के कारण वे लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपने काम और व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग

पहचान बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जो हमें हमारे द्वारा बजाई गई धुनों को जो हम साथ साथ बजाकर आपको सुनवाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी भेजी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि बहुत ही प्यारे लगे फिरोज खान। साथ ही वो कह रही है कि प्यार कोई सोच समझकर किया हुआ फैसला नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। कभी किसी की एक मुस्कान से, कभी उसकी बातों से, उसकी प्यारी सी आवाज से, उसके भोलेपन से, उसकी सादगी से, और कभी किसी बिना किसी वजह के भी कोई दिल के करीब आ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी से अपना बन गए। आज तो लोगों की एक ही पसंद दिख रही है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। फिल्म धर्मात्मा का ये गीत, जी हाँ, और ये हमने सुनवा दिया है, हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी ये गीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज यादों की महफिल प्रोग्राम बढ़िया गीतों से सजा था, सुरीला सफर में ऐसे गाने सुनने की चर्चा तथा सवाल जवाब की अपेक्षा करते हैं। आप सुनिए आगे ये गीत जो आज हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आनंद लीजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते दिल बाग बाग हो गया, ऐसे खूबसूरत एहसास कभी जगाने के लिए मूड बनाना पड़ता था, आज शब्दों का ऐसा तिलिस्म देखने को मिला कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ापा पीछे छोड़ जवान हो गए। क्या बात है, अब ढूंढते हैं प्यार को, देखिए कहाँ मिलता है। आज तो गीतों की बहार होगी, उसी में दिल बहलाते हैं और एक अच्छी दोपहरी विविध भारती के संग बिताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार तो है ही विविध भारती के संग। और अब जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइएगा इस फिल्म का नाम।

सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये भी साथ बताते चलिए। क्या आकर्षण भी सच्चा प्रेम दर्शा सकता है?

0: इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, लेकिन इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये हमने आपको बताया। और अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: तो श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। और इस कार्यक्रम की ये खास बात है कि जो गीत हम चुनते हैं उससे ये कार्यक्रम बनता है सुरीला, लेकिन आपके संदेशों से बनता है सजीला। तो भेजते रहिए हमें आपके संदेश, हमें इंतजार है बेसब्री से आपके संदेशों का। अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना एक अतार्किक रोमांच है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सामान्य और तर्क संगत दुनिया में अलौकिक मानने के लिए प्रलोभित होते हैं। प्यार की भावना व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति को जीवन के सभी पहलुओं में एक सर्वोच्च आनंद की अनुभूति से भर देती है। उन्होंने एक बड़ा ही प्रयास से बहुत बड़ा संदेश हमें भेजा है, विस्तार में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, फिर भी आपका संदेश हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार तो कब, क्यों, कहां और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी को देखा और वो दिल में उतर गया और प्यार हो गया, पर प्यार जब चेहरे पे झलकता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसकी एक नज़र मिल जाए इतनी फरियाद, चाहत सचमुच निगाहों का ही खेल है। उनकी निगाह पड़ी तो दिल खुश, न पड़ी तो अपनी निगाहें उदास। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल सजी हुई है, यानी कि वो सुन रहे थे तब उन्होंने ये संदेश हमें भेजा। मेरा बहुत ही पसंदीदा गायक SP बालसुब्रमण्यम, उनकी जयंती, उन्हें याद किया जा रहा है और सुपरहिट गीतों से सजा हुआ इन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। जी, बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि जिंदगी की राह में जब कोई हम सफर मिल जाता है तो खामोश धड़कनों को भी एक नया साज मिल जाता है। तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है बाहर, जब तुम देखते हो तो थम जाता है संसार। मोहब्बत तो वो पावन दुआ है जो भगवान से मिलवाती है, सच्ची चाहत ही दिलों के सारे फासले मिटाती है। भुला कर शिकवे गिले थाम लो हाथ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, वो गीत कार्यक्रम का पहला गीत नहीं था, वो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत चेहरे और बातों से नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई से भी पहचाना जाता है। मन में जरा सा भी संदेह अगर उठ जाता है तो प्यार प्यार नहीं मिल पाता और खो जाता है मिलने की बजाय।

जी श्रोताओं, बताते चलिए कि जब किसी से प्यार हो जाता है और वो हमारा साथी बन जाता है, तो आप उसकी तारीफ में क्या कहना पसंद करते हैं? कब आपने आखिरी बार तारीफ की थी उसकी और कैसे, ये बताइए।

जी हाँ, एक और गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धर्मात्मा से। आवाज़ें फिर से मुकेश और कंचन की थी। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम अपने आप में निर्मलता, शुद्धता, करुणा और असीम आनंद को समेटे हुए है, और यह वह चुंबकीय खिंचाव है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के कण कण को एक सूत्र में बांध कर रखता है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक दौर में भले ही प्यार के मायने और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप आज भी वही है। प्यार का मतलब केवल किसी के ख्यालों में खोए रहना या पजेसिव होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायक बनना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। प्यार जीवन का वह खूबसूरत उपहार है जिसे जितना बिना किसी स्वाद के बांटा जाए, यह उतना ही गहरा और अनंत होता जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि आपने कब आखिरी बार अपने साथी की या जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तारीफ की थी, वो बताते चलिए। हालांकि खूबसूरती की तारीफ ना की जाए तो कैसे चलेगा? हर खूबसूरत चीज़ की, अंदाज की, व्यवहार की, बात की या किसी खूबसूरत इंसान की तारीफ तो कर ही देना चाहिए। खासकर जिससे आप प्यार करते हैं उनकी तारीफ में कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो बताइए आपने कब की थी तारीफ उनकी जिन्हें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जिंदगी में एक अलग ही नूर है। शायद इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती है। जब तुम अपनी उन मासूम नजरों से देखते हो तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसा पावन बंधन है जो दो सच्चे दिलों की धड़कन बन जाता है। जी हाँ, तुम्हारी इसी शरारत, जरा सी शरारत और वफा ने दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा लगता है मानो सदियों का कोई अधूरा ख्वाब आज तुम्हारे साथ मुकम्मल हो गया हो। बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास दे जाता है। हमारे श्रोताओं ने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं, उनमें से कई गीत ऐसे हैं जो अभी तक जो बच चुके हैं वो भी शामिल हैं। आप आगे सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। और एक श्रोता कह रही है कि प्रेम का एहसास बड़ा सरल है मगर तकदीर के नियम बड़े जटिल हैं। यह बड़े किस्मत वालों को मिलता है। कभी कभी लगता है प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी कभी कभी बड़ी अराजक हो जाती हैं। वे किसी नियम को नहीं मानती और प्रेम टूट जाता है। इंसान इसी त्रिकोण में अपने अर्थ खोजता रहता है और प्रेम की यही खोज उसे इंसान बनाती है, एक सच्चा इंसान। बहुत खूब। अब आ रहा है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात? भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफ़र मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज़ खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूँ और कहता हूँ जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज़ खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियाँ और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है, बिल्कुल। एक श्रोता कह रही है, प्यार में पसंद ना पसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज़ दी है। जी हाँ, हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना ज़रूरी है। प्यार जीवन में ज़रूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूँ, तेरी सूरत पर नहीं मैं तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो एक उभरती गायिका रही हैं, जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वीर जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए, चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी

कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज, उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता था। उनके लेदर बूट्स, हैट्स, सिगार और वेस्टर्न लुक ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट किया था। बिल्कुल, आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें लिख भेजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी शादी के पहले मैंने पत्नी से एक साल प्यार किया, एक साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी, प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज़ में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई, हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूँ, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूँ। क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीतबद्ध किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूँ। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की करते हैं, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी, कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। भाई बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए।

एक श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हो हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है। हमारी एक श्रोता हमसे साझा कर रही है कि क्या खूब लगती हो ये गीत हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बच चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फिरोज खान साहब की बहुत शानदार फिल्म रही है और इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन अफगानिस्तान में किया गया था। पूरी एक टीम एक महीने से ज़्यादा वहाँ पे रही थी। जी धन्यवाद ये बात साझा करने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह क्या गलत फहमी है, दूसरा पहला और पहला दूसरा गीत क्या कहना चाहते हैं आप? एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया था, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नज़र सबके पास नहीं होती, और ज़िंदगी में वो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना जिंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती से, वो भी कई सालों से। जी, विविध भारती से तो आपका प्यार चलते ही रहना चाहिए।

एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है। और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने विनम्रता के हथियार से समस्त संसार के झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला सफर सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान के फिल्मों की ही बात हुई है स्मृति दिवस पर। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हीं के गीत आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहाँ हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकें। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाज़त लेती हूँ मैं, पूजा नारानिया, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 47वीं कड़ी।

स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रसंग, आने वाले समय में राष्ट्रगीत कौन सा होगा, इस विषय में आम लोगों के या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं था। मानो वंदे मातरम ही राष्ट्रगीत होगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का नेतृत्व करने वाले और सभी के मन में आदर का स्थान रखने वाले महात्मा गांधी की इस बारे में भूमिका अभी स्पष्ट होनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गाए गए वंदे मातरम का प्रभाव उनके मन पर स्थायी रूप से रहा था। 29 अक्टूबर 1947 को गांधी जी की दिल्ली में हुई प्रार्थना सभा में श्री अरविंद के अध्यात्म मार्ग के शिष्य और गायक दिलीप कुमार रॉय ने अपनी संगीत रचना में वंदे मातरम का गायन किया। अब सुनिए दिलीप कुमार रॉय के स्वर में वंदे मातरम की वो संगीत रचना जो उन्होंने बंगाली लोकगीत शैली में गाई थी।

वंदे मातरम इस गीत के प्रति दिलीप कुमार रॉय को असाधारण आत्मीयता थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण हिंदुस्तानी और उत्तर हिंदुस्तानी भारत की दो मुख्य गायन पद्धतियों में जुगलबंदी या सहगायन के रूप में संगीत रचना बनाई। भारत रत्न M.S. सुब्बुलक्ष्मी और स्वयं दिलीप कुमार रॉय ने ये गायन किया था।

0: भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी संविधान सभा की अंतिम बैठक अभी होनी थी। राष्ट्रगीत कौन सा हो इस विषय पर चर्चा शुरू थी। पंडित नेहरू की पहल पर रविंद्रनाथ के जन गण मन गीत का राष्ट्रगीत के लिए आग्रह किया गया। वंदे मातरम में राष्ट्रगीत के अनुरूप या अंतरराष्ट्रीय समूह में बजाई जा सके ऐसी संगीत रचना नहीं है ऐसा एक मुद्दा रखा गया था। उसका समाचार पढ़कर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम करके एक संगीत विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रगीत के बारे में मेरे विचार लिए जाएं ऐसी विनती की।
1: मास्टर कृष्ण राव फुलंब्रीकर। मराठी संगीत नाटक, शास्त्रीय संगीत और नवागत फिल्म संगीत के क्षेत्र के एक बड़े व्यक्तित्व थे। पंडित भास्कर बुआ बखले की सांगीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले मास्टर कृष्ण राव एक प्रयोगशील संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1936 के आसपास प्रभात फिल्म कंपनी में संगीत निर्देशक के रूप में काम करते हुए वी शांताराम की पहल पर मास्टर ने स्वयं अपनी झिंझोटी राग की रचना प्रभात के स्टूडियो में ही ध्वनिमुद्रित की थी। उस समय के फिल्म संगीत की संगीत रचना के अनुसार ही उसमें वाद्यों का उपयोग और ऑर्केस्ट्रेशन किया गया था।

मास्टर कृष्ण राव ने मराठी संगीत नाटकों में बाल गंधर्व के साथ काम किया था। कुलवधू जैसे नए नाटकों को अलग संगीत भी दिया था। संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम गायन की जो परंपरा थी वह संगीत रचना भी मास्टर की ही थी। आगे चलकर छोटा गंधर्व जैसे प्रसिद्ध गायक अभिनेता जयराम और जयमाला शिलेदार परिवार, राम मराठे जैसे गायक अभिनेता अपने संगीत नाटक के अंत में वंदे मातरम का गायन करते थे। छोटा गंधर्व द्वारा संगीत सौभद्र इस नाटक के अंत में नांदा सौख्य भरे इस पद के साथ जोड़कर गाया गया वंदे मातरम का ये ध्वनि मुद्रण आप सुनिए।

0: मास्टर कृष्णराव झिंझोटी राग में निबद्ध वंदे मातरम का गायन अनेक बड़े कार्यक्रमों में करते थे। परंतु आकाशवाणी पर वंदे मातरम गायन की अनुमति नहीं मिल रही थी। अंत में मास्टर कृष्णराव ने सीधे प्रसारित हो रहे आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम में झिंझोटी राग के नाट्य पद को जोड़कर बिना रुके वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। ये ध्यान में आते ही स्टेशन डायरेक्टर बुखारी ने तुरंत विद्युत प्रवाह बंद कर दिया। वंदे मातरम का गायन रोके जाने के विरोध में मास्टर ने आकाशवाणी पर बहिष्कार कर दिया। आगे 10 साल बाद 1947 में चैत्र पाड़वा पर वल्लभ भाई पटेल के निमंत्रण पर आकाशवाणी पर बुखारी की ही उपस्थिति में वंदे मातरम गाकर बहिष्कार वापस लिया। बीच के काल में 1942 के 8 अगस्त को मुंबई के भारत छोड़ो आंदोलन की सभा में मास्टर कृष्ण राव ने ही वंदे मातरम गाया था, इसलिए फिर एक बार वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए मास्टर ने प्रयास शुरू किए।
1: मास्टर कृष्ण राव ने पंडित नेहरू को टेलीग्राम किया। उसका उत्तर आया, पंडित नेहरू और अन्य संसद सदस्यों के सामने प्रदर्शन दिखाने की अनुमति मिली। उसकी पूर्व तैयारी के रूप में मास्टर स्वयं पुणे के पुलिस संचालनालय की पुलिस परेड के साथ खुद कदम मिलाकर मार्च पास्ट की दृष्टि से इस संगीत रचना की उपयोगिता को परख रहे थे। दिल्ली में जनरल करियप्पा के सामने और पंडित नेहरू के सामने उसका प्रदर्शन हुआ। मिलिट्री बैंड के प्रमुख लजपत सिंह ने उसे बजाकर देखा और उसकी सफलता की गारंटी दी।

0: परंतु यह राष्ट्रगीत दुनिया के अन्य देशों के घोष दलों को भी बजाना आना चाहिए। पाश्चात्य संगीत रचना से भी उसकी निकटता हो, ऐसी सूचना मिलने के बाद मास्टर कृष्णराव मुंबई आए और नायगांव के पुलिस मुख्यालय के ब्रिटिश संचालित घोष विभाग के प्रमुख सी आर गार्डनर के सहयोग से विदेशी पद्धति की स्वर रचना में मूल धुन को धक्का न लगाते हुए घोष पर अभ्यास किया। नेविल बैंड के प्रमुख स्टैनले हिल्स ने ब्रास वाद्यों पर यह संगीत रचना तैयार की। इन दोनों पाश्चात्य संगीत विशेषज्ञों ने मास्टर कृष्णराव की संगीत रचना के बारे में अत्यंत अनुकूल मत और अभिप्राय दिए। इसलिए अत्यंत उत्साह से मास्टर कृष्णराव ने संविधान सभा और पंडित नेहरू से फिर से नए प्रदर्शन की अनुमति मांगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 47वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयन पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयन पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम के दुर्लभ ध्वनि मुद्रण मिलिंद सबनिस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
4: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई

0: ऊर्जा से भर देता है। ये सात सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए।

0: रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
1: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला LPG रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
6: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत बद इस गीत को किया है रवि ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ऊंचे लोग इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
5: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में मंजू सुल्तानपुरी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत। फिल्म का नाम है वापस।

एफएम बैंड 103.4 MHz पर ही आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को है अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त और पंजाब व हिमाचल के प्रभारी राजीव बिष्ट ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि संगठन ने वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है, जो 17 सितंबर से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 96,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राजीव बिष्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 8,664 अंशदायी प्रतिष्ठानों के कुल 3,36,759 सदस्य हैं। इनमें से लगभग 96,000 सदस्य वर्तमान में 15,000 रुपये मासिक वेतन पर सीमा पर अंशदान कर रहे हैं, जिन्हें नई सीमा बढ़ने से सीधा लाभ मिलेगा। बिष्ट ने बताया कि वेतन सीमा बढ़ने से अब अधिक संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
1: इसलिए जरूरी बनता है कि सब जो पीएफ के लिए मेंबर के बनने के लिए रहे हैं वो तुरंत पीएफ के मेंबर बने और 17 तारीख से जब उनकी सितंबर की सैलरी रिलीज हो वो उस समय उनका पीएफ की मेंबरशिप के साथ साथ पीएफ मेंबर कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। सरकार द्वारा एक एम्प्लॉई एनरोलमेंट कैंपेन भी चल रही है जिसके तहत स्पेशल छूट दी गई है कि ऐसे जो भी एम्प्लॉई हैं जो कि किसी भी कारणवश उनको उनके नियोक्ता द्वारा पीएफ का लाभ नहीं दिया गया था, एक तरह से वारंटी डिस्कोर के चलते मिनिमम पेनल्टी के साथ केवल इंटरेस्ट देके वो उनको भी उस डेट से मेंबर बना सकते हैं। मात्र 100 रुपए का डैमेज लग के वो उनको मेंबरशिप एक्सटेंड कर सकते हैं।
0: आज महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। वे महान दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि उन्होंने सारी उम्र समाज के सुधार के लिए कार्य किया और जीवन में कर्तव्य के लिए 7 मूल मंत्र दिए।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: हिम ई पंचायत प्रोसेसिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के समीप डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासनिक संस्थान में आज इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इससे बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 90% क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है और गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की है। शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने धारकंडी की दरणी पंचायत में 4,54,00,000 रुपए से बने विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इससे क्षेत्र की 8 पंचायतों के लगभग 9,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और वर्षों से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी। पठानिया ने बताया कि अब इलाके में बेहतर व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है पीएम विश्वकर्मा से पारंपरिक कारीगर व शिल्पकार हो रहे सशक्त। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना अपने शुभारंभ के लगभग 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी है और अब तक 30 लाख लाभार्थियों को पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूल किट, ऋण सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट, जीईएम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के मूल मंत्र पर आधारित ये योजना गुरु शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल को मजबूत करते हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका काम पारंपरिक कौशल, परिवार से मिले ज्ञान और छोटे स्तर के उद्यमों पर आधारित है। इन्हें शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना 3 प्रमुख स्तंभों, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि पर आधारित है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मान, कौशल और आर्थिक अवसर प्रदान करना है। साथ ही ये गुरु शिष्य परंपरा और परिवार आधारित पारंपरिक कौशल को संरक्षित एवं मजबूत करने का प्रयास करती है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कुल परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत 18 पारंपरिक ट्रेडों को शामिल किया गया है। योजना का लक्ष्य कारीगरों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता व बाजार पहुंच बढ़ाने के साथ उन्हें घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना है। योजना के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को एक ही प्रारूप में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इसके प्रमुख घटकों में मान्यता, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल है। पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है। कौशल उन्नयन के माध्यम से लाभार्थियों को आधुनिक उपकरणों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन डिजाइनों से परिचित कराया जाता है। प्रशिक्षण में डिजिटल लेन देन, विपणन और उद्यमशीलता ज्ञान भी शामिल है। बुनियादी प्रशिक्षण 5 से 7 दिनों के लिए चलता है, जबकि उन्नत प्रशिक्षण 15 दिनों या उससे अधिक के लिए होता है। प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 500 रुपए का वजीफा दिया जाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हिमाचल के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हस्त निर्मित उत्पादों को देसी विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में पहल की है। इस सुविधा के चलते कुल्लू जिला के बुनकरों व हस्तशिल्पियों को भी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को आधुनिक बाजार से जोड़ना है। ऑनलाइन बिक्री की सुविधा मिलने से हिमाचल के हस्त निर्मित उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में खरीदार मिल सकेंगे तथा वे विदेशी बाजारों में भी निर्यात कर पाएंगे। मंत्रालय ने देश भर में ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से घर द्वार तक सामान पहुंचाने वाली नामी कंपनियों से समझौता किया है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हस्तशिल्पियों को चिन्हित कर पंजीकृत किया जा रहा है और इनके द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक व हस्त निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि कारीगरों को देश भर में ग्राहक मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आरे लगे जाएंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ, राधिका कुर्मी।
0: तो राधिका जी ये बताइए कि आप करती क्या है?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं, कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: नाइन्थ में, यानी कि आप अभी
1: जी
0: अभी 10th तक पहुंची नहीं है, तो 10th
1: जी जी
0: की तैयारी में है ना, तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी दीदी, मैं दीदी हम दिव्यांग है, तो दीदी हम लोग संगीत सीखते हैं, तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस। दीदी हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, दीदी वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु,
0: अच्छा,
1: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी, कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
0: अच्छा, तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
1: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है तो हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी
0: हाँ ये तो
1: वही
0: है।
1: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
0: अच्छा
1: दीदी सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी
0: तो
1: दीदी,
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज
0: और
1: और
0: गाना
1: गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, हम कभी ना बनो, हम कर्नाटक चिकमंगलूर से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सबसे भी सखी सहेली, हेलो सहेली, छाया गीत, वो सब सुनती हमें।
0: अच्छा, आपको किसी चीज से डर लगता है क्या? कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं डर लगता।
0: नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं डरती मैं।
0: नहीं,
1: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती,
0: अरे वाह,
1: किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: नहीं डरती, वो
0: क्योंकि
1: डरते ही, वो बहुत जने डरते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कभी सफाई करते हैं ना घर में।
1: नहीं डरती मैं।
0: जी, है ना। तो
1: हाँ,
0: बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
1: आप तो ऐसे न थे। हाँ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: शुक्रिया हमारी फरमाइश।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मेरा नाम शिवाती, गांव गोसगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: तो ये बताइए आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा।
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप?
1: हाँ जी, अभी तो स्कूल गया।
0: अच्छा, छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि बड़ा
1: नहीं
0: है?
1: छोटा, अभी तो छोटा ही है।
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना
1: हाँ जी।
0: भतीजे के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा, एकदम चिल्ला पड़ती हूँ जिसको देख के?
1: छिपकली।
0: छिपकली।
1: हाँ जी,
0: सही बात है ना?
1: हाँ जी, पर भतीजा नहीं डरता है, छोटा सा है पर वो नहीं डरता,
0: हाँ, वो नहीं डरता। अच्छा, तो ये तो
1: वो
0: अच्छी
1: नहीं
0: बात है
1: डरता।
0: फिर तो। आप जब भी आपको डर लगे ना, तो छिपकली या कॉकरोच निकल आए, तो आप उसको बुला लीजिए, अपने भतीजे को कहिए कि पहले तुम इसको हटाओ फिर हम खेलेंगे।
1: जी वो तो अपने आप आ जाता है, झाड़ू लेके फिर खुद से मारते हैं, लेकिन अब बुआ जी आप कर लो। जी
0: अच्छा, तो
1: जी
0: बुआ जी ये बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेटा, फिल्म का गाना सुनना है, खुशियों का दिन आया है।
0: चलिए सुनाते हैं आपको
1: जी
0: आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: तारीफ कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं सिलाई करती हूँ मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा हसीना जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो।
1: नहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर
0: नहीं लगता
1: निडर
0: छिपकली
1: रहेंगे
0: से।
1: तो, अगर अपने सामने कभी खतरा भी आएगा निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा।
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से।
1: छिपकली से तो बहुत डर लगता है मैडम, हर किसी को
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है,
0: मैं
1: और
0: पूछना
1: महिलाओं को तो अधिक डर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर।
1: सफाई करते हैं ना मैडम, अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो, तो ऐसे दिखाई नहीं देती, मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए
0: हाँ
1: तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाएं और इसके पीछे छिपकली हो, है ना, लगता है ना।
1: जी, तो इसके ऐसा करने तो मैडम झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को आप भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है कभी उधर छुप जाती
1: हाँ
0: है ना।
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती है वो।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है ना।
1: जी,
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का।
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम और गाने के बोल हैं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमका सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे
0: अरे
1: दो। ये
0: आपसे
1: सुना
0: आपसे कोई भूल नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामनी हैदराबाद।
0: अच्छा तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैम कुछ नहीं कर रही, पढ़ाई करती हैं मैम।
0: पढ़ाई करती हैं
1: मैम जी कक्षा 7वीं में।
0: अच्छा 7th में आप, यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी आप 10th तक पहुंचने में काफ़ी टाइम है आपको, तो अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको कौन से विषय आपको बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ने में?
1: मैम जी हमें, मैम जी कुछ नहीं, खाना बनाए बहुत मजा आता है।
0: खाना बनाना अच्छा लगता है। तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती
1: हैं? मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: कौन सी फिल्म का है?
1: सर्वप्रथम मूवी का।
0: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
1: जी मैम।
0: ठीक है तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जालना महाराष्ट्र से।
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सब?
1: हमारी सासू माँ है, सस्ते है, मेरे दो बेटियाँ हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: प्रियंका अंकिता।
0: अच्छा तो बेटियां बड़ी हैं कि छोटी?
1: हमारे घर वाले राजेश तिवारी,
0: अच्छा
1: अभी एक कॉलेज जाते है, एक स्कूल जाते है।
0: अच्छा है ना।
1: नन्हे चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: ओ हेलो, फरमाई सुनते हम
0: अच्छा, और कौन
1: आज
0: कौन
1: के
0: से
1: फनकार।
0: कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: सखी सहेली, हेलो
0: या
1: सहेली,
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं?
1: हाँ बातचीत वाले ज़्यादा।

0: अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह या इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे?
1: हो कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं?
1: इडली बनाते हम ज्यादा,
0: इडली।
1: इडली डोसा।
0: अरे वाह, इडली डोसा, मतलब ये रहता है ना कि ये एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है खाने
1: सही
0: में।
1: बात है।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आरती
0: हाँ
1: सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: प्रतापगढ़ गांव है मेरा, बासी जगेसरगंज।
0: तो
1: और मेरा नाम रीना देवी मौर्य है।
0: अच्छा, तो रीना देवी जी, ये
1: मैम
0: बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं यही सिलाई विलाई से अपन करती हूँ घर पर।
0: अच्छा, तो आप घर से ही काम करती हैं सिलाई का, है ना?
1: हाँ,
0: तो
1: वही से
0: आप क्या क्या
1: अपन
0: सिल लेती हैं, क्या क्या सिलती हैं?
1: ब्लाउज पेटीकोट यही सब सिलती हूँ।
0: अच्छा, तो आप महिलाओं के कपड़े सिल लेती हैं अच्छे तरीके से। तो ये बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हम हैं, दो बेटे हैं।
0: अच्छा, तो बेटे छोटे हैं कि बड़े?
1: नहीं मैम जी, एक आरा में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में।
0: अच्छा, यानी छोटे ही हैं। पढ़ाई तो अब इस समय काफ़ी अच्छे से करनी पड़ रही होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह भी होंगे, है ना? तो ये
1: हाँ
0: बताइए, आपके दोनों बेटे हैं, तो क्या बेटे काम में कुछ हाथ बटाते हैं घर के?
1: हाँ मैम जी, एक रहता है दुकान पर रहता है, तो हम अपना काम घर का कर लेते हैं, और उसके बाद स्कूल चला जाता है, तो स्कूल से आता है। अभी
0: अच्छा
1: 2 बजे आएगा गए।
0: अच्छा तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब काम में भी हाथ बटाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिंसियर हैं बच्चे। तो ये बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप थोड़ा बहुत खाली समय में होती हैं, तो आप क्या करती हैं?
1: बस मैम जी, अपन ये सिलाई का काम करते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
0: गाना सुनती हैं। तो ये बताइए,
1: हाँ
0: आपको

0: कौन कौन से, आप जो ये विविध भारती सुनती होंगी तो आपको कौन कौन से इसके कार्यक्रम है अच्छे
1: हम तो
0: लगते हैं?
1: जब समय पा जाते हैं तब अपन मोबाइल पे चला लेते हैं, वही सुनते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं।
0: हाँ, यानी कि आपका जो काम है वो आसान हो जाता है ना करना।
1: हाँ अपन काम करते रहते हैं, खाना बनाते हैं तब भी चला लेते हैं, सुनते रहते हैं और मत सुनते रहते हैं।
0: यही तो खूबी है ना संगीत की और विद भारती की, कि मतलब आपका जो काम है उसको आसान बना देता है ना, आप सुनते रहिए उसको और अपना काम करते रहिए तो पता नहीं चलता
1: कोई
0: है कि हम
1: नहीं,
0: कितनी देर से काम
1: अपना
0: कर रहे हैं।
1: हाँ अपना गाना सुनते रहो, अपना काम करते रहो। ठीक,
0: तो ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं अपने मन का?
1: मैं भी राजा हिंदुस्तानी का, आए हो मेरी जिंदगी में।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है, तो सुनाती है आपको आपकी पसंद का ये।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम
0: तो बताइए, पहले आप कौन से शहर से बोल रही हैं और आपका खुद का नाम क्या है?
1: जी। मैडम मेरा नाम सीमा सोलंकी है और मैं उज्जैन जिले के गांव ताजपुर से बात कर रही
0: अच्छा, आप उज्जैन से बोल रही हैं। उज्जैन यानी
1: हूँ।
0: कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है जिसे, है ना?
1: हाँ, उज्जैन का गांव है, ताजपुर कैसा है गांव।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैडम, मैं तो खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
0: अरे वाह, खेती बाड़ी का काम करती हैं तो बहुत ही ज्यादा
1: हाँ
0: मेहनत का काम होता है, समझिए, है ना?
1: हाँ

0: बहुत मेहनत का काम होता है।
1: तो मतलब आप सुबह से निकल जाती होंगे ना, सुबह जाना होता होगा आपको।
0: सुबह से खाना वाना बना के मतलब है घर से खाना वाना बनाने वाले, और भी दो बेटियां हैं।
1: तो बेटियां बनाती हैं, काम करती हैं घर का?
0: हाँ, बेटियां भी मदद करती हैं, और खेत पे आके फिर मजदूर को खाना वाना उनका चारा निराव पानी करके
1: हाँ,
0: फिर खेत का काम करते हैं।
1: फिर आपको एक चीज होती ना कि वहाँ खेत पे जाकर खाना खाना, सच में ऐसा लगता है ना
0: हाँ, खेत
1: सोच
0: पे
1: के।
0: खाना भी खेत पे ही खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना जब
1: हाँ
0: भूख लगती है तो फिर वो घर का वही खा लेते हैं।
1: हाँ तो वहाँ पे आप खेत में अपना खाना लेकर जाती होंगे ना?
0: हाँ, खेत पे कुआ है तो उसमें से पानी आने भर के वही खाना खा लेते हैं।
1: वाह, कितना प्रकृति के पास रह रही हैं आप, सोचिए ये भाग्य की बात है एकदम, जो प्रकृति के इतना करीब रहने को मिल रहा है आपको। वैसे भी ना खेत पे जाकर, वहाँ पे खुले में एकदम खुला खेत है, वहाँ पे सब फसलें लगी हुई हैं वहाँ, है ना,
0: बहुत
1: और
0: अच्छा
1: आप
0: लगता है
1: बैठ के
0: मैम खेत
1: खाना
0: पे
1: खा
0: तो।
1: रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना
0: हाँ, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी हैं और
1: साथ में
0: फसलें
1: आपका
0: भी।
1: रेडियो सेट भी रखा हुआ है, आपके फोन भी आप सुन रहे
0: हाँ, मैं
1: हैं
0: अपने
1: विविध
0: फोन
1: भारती।
0: पे रेडियो भी सुनती हूँ।
1: हाँ
0: हाँ,
1: तो ये
0: लगी है
1: बताइए कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं या?
0: जी मैडम, पढ़ती है अभी, दोनों कॉलेज कर रही है।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत
0: तीन
1: अच्छी बात
0: बेटियां हैं
1: है।
0: मेरी, तो तीनों बेटियां अभी एक तो स्कूल कर रही है और दो कॉलेज कर रही है। जी,
1: यानी कि घर के काम में हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं।
0: 8 दिन में एक बार कॉलेज जाती है वो।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ाई भी करना और साथ में
0: पढ़ाई
1: अपने आप को,
0: भी कर रही है और मदद भी करती है। दो
1: नहीं सच में बहुत अच्छी बात है ये।
0: बेटा है उसके
1: तो बेटा कुछ करता
0: पापा।
1: है मदद?
0: हाँ, बेटा तो बेटा भी करता है सुबह शाम, वो भी कॉलेज कर रहा है
1: नहीं
0: और
1: सही बात है,
0: दुकान भी
1: बच्चों को
0: चलाते
1: सिखाना
0: हैं।
1: भी चाहिए ये सब चीजें कि आप पढ़ाई भी करो साथ में, थोड़ा सा हाथ भी बटाओ,
0: हाँ,
1: तो
0: साथ में
1: उससे
0: थोड़ा बहुत
1: जुड़ाव
0: मदद
1: रहता
0: भी करते
1: है,
0: हैं।
1: बहुत अच्छा रहता है ये।
0: हाँ, और उसके पापा तो है नहीं, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया तो
1: हाँ
0: बच्चे ही मदद करते हैं।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है, सब मदद करते हैं बच्चे आपस में। तो ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी मैडम, वो चल अकेला मेरा मेला पीछा छूटा साथी, चल अकेला सुनना।
1: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: चल।

0: अकेला। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 28670288 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867028 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतज़ार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारे जिन भी सखियों का कॉल आज नहीं लग पाया वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाइए और अपनी सखियों को अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: के सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन, श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी, उसके दिल पर छाई घटा बन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

0: यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहाँ निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था,
2: जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए।
0: दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहाँ आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे। उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं। तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। और श्रुति कहते कहते अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ। और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं। पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना?

0: फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति।
1: ठीक है।
0: श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी।
1: माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो?
0: कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी

समझाएगा तब वो क्या करेगी? विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी। उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम? श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा, तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो? एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता? रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो? रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो? अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो? अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा? इंसानी जिजीविषा? वही तो मैं कह रही हूं, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों? रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

0: शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूं, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा, हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूं, यहां 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि यह सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
2: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भर कर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में।
5: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार। 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे।
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
7: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
6: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के विद्यार्थियों के एक समूह से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्राएं निकाले जा रही हैं। शोभा यात्राओं को देखने और गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। मानु शाह और दिया चितारे ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य समेत 21 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

भक्ति संध्या कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। शाम का समय है, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम के साथ। और आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा जी। बिल्कुल, आज शुक्रवार है और फिल्मी फ्राइडे के साथ हम हाजिर हैं। हम अपने मनोरंजन के लिए युवा साथियों बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें चाहे गार्डनिंग हो, डांस करना हो, म्यूज़िक सुनना हो या फिर फिल्में देखना हो। और भाई, फिल्में भी कई तरह की होती हैं, जिसमें बजने वाला संगीत भी अलग अलग तरह का होता है। तो ये हम सब की अपनी पसंद होती है। कोई रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करता है, कोई एक्शन मूवीज़ को देखकर खुश होता है, कई लोग नई फिल्में देखना पसंद करते हैं, कई पुरानी सस्पेंसफुल थ्रिलर फिल्में भी लोगों को पसंद आती हैं। तो युवा साथियों, आज है फिल्मी फ्राइडे और आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो क्या कुछ रहा इस फिल्म को बनाने के पीछे, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, आज हम फिल्मी फ्राइडे में बात करेंगे बाजीराव मस्तानी के बारे में और उसी फिल्म के गीत भी आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

बाजीराव मस्तानी फिल्म के गाने आज के फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने युवा साथियों को सुनवा रहे हैं। बाजीराव मस्तानी 2015 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक प्रेम त्रासदी फिल्म है, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है। उन्होंने ही फिल्म का सह निर्माण इरोस इंटरनेशनल के साथ मिलकर किया और इसका संगीत भी तैयार किया। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि तन्वी आजमी, वैभव तत्वानी, मिलिंद सोमन, महेश मांजरेकर और आदित्य पंचोली सहायक भूमिकाओं में हैं। नागनाथ एस ईमानदार और मराठी उपन्यासकार राव पर आधारित बाजीराव मस्तानी मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी की कहानी बयां करती है। फिल्म बाजीराव मस्तानी 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई और भंसाली के निर्देशन, विभिन्न तकनीकी उपलब्धियों और कलाकारों के अभिनय को इसमें खूब सराहा गया। फिल्म में इसके भव्य निर्माण, विशालता और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए इसे काफ़ी प्रशंसा मिली है और कई पुरस्कारों से इसे सम्मानित किया गया है। इस फिल्म ने 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में संजय लीला भंसाली का नाम है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री में आजमी का नाम भी शामिल है। फिल्म को 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 14 नामांकन मिले हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान भी मिला है।

फिल्मी फ्राइडे में युवा साथी सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के गाने और सत्य कहानी पर आधारित ये फिल्म है। और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है, बात अगर हम करें 1720 की तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद मराठा छत्रपति साहू के दरबार में उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। अंबाजी पंत पुरंदरे ने विश्वनाथ के युवा पुत्र बाजीराव को नामित किया, जिन्होंने दरबारी परीक्षा में अपनी सामरिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और आधिकारिक तौर पर नए पेशवा नियुक्त हुए। कहानी आगे 10 वर्ष बाद की है, जहां बाजीराव की मुख्य पत्नी काशीबाई से उनके विधवा मित्र भानु मिलने आती है, जिनके पति को बाजीराव ने जासूसी के आरोप में मृत्युदंड दे दिया था। व्यथित और दुखी भानु काशीबाई को श्राप देती है और भविष्यवाणी करती है कि एक दिन वह भी अपने पति की उपस्थिति के लिए तड़पेगी। इसी बीच सिरौंज में सैन्य अभियान के दौरान बाजीराव से बुंदेलखंड से एक सैन्य दूत आक्रमणकारी सेनाओं के विरुद्ध सहायता मांगने आता है। दूत स्वयं को मस्तानी बताती है, जो हिंदू राजपूत राजा छत्रसाल और उनकी फारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई की योद्धा राजकुमारी पुत्री है। उनके वीर शौर्य से प्रभावित होकर बाजीराव रक्षा में शामिल हो जाते हैं और आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ देते हैं। इसके बाद होली के उत्सव के दौरान बाजीराव और मस्तानी में प्रेम हो जाता है। प्रस्थान करने से पहले बाजीराव उन्हें अपना निजी खंजर भेंट करते हैं। इस बात से वो अनभिज्ञ हैं कि राजपूत परंपरा में ये भाव औपचारिक विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक है। कहानी में आगे क्या हुआ वो इस गीत के बाद हम आपको सुनवाएंगे।

युवा साथियों, सत्य घटनाओं पर आधारित बाजीराव मस्तानी फिल्म के गाने आज के फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं। कहानी हम सुनवा रहे थे बाजीराव मस्तानी की, और बाजीराव के पुणे लौटने पर उनकी प्रसन्न पत्नी काशीबाई उनका अपने नवनिर्मित महल शनिवारवाड़ा में स्वागत करती है, जिसे आईना महल यानी दर्पणों का हॉल भी दिखाया गया है, जो उन्हें अपनी बालकनी से उनके कक्षों को देखने में सुविधा देता है। इसके बाद मस्तानी पुणे पहुंचती है ताकि बाजीराव की पत्नी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर सके। हालांकि बाजीराव की रूढ़ीवादी माँ राधा भाई और भाई चिमाजी अप्पा उसके मुस्लिम वंश का कड़ा विरोध करते हैं। राधा भाई उसके मुख्य महल में प्रवेश करने से उसे रोकती है और उसे दरबारी महिलाओं के लिए आरक्षित कमरों में रखकर अपमानित करती है। मस्तानी धैर्यपूर्वक इस दुर्व्यवहार से को सहती है और छत्रपति साहू के दरबार में सार्वजनिक रूप से बाजीराव की पत्नी के रूप में मान्यता देने की अपील करती है। बाजीराव शुरू में मस्तानी को चेतावनी देते हैं कि उनकी राजनीतिक कर्तव्यों और पहले विवाह के कारण उसे लगातार सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर वे उसे आधिकारिक तौर पर अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये वसादी उसके बाद वे हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक महत्वपूर्ण अन आक्रमण संधि के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसमें मराठा संघ की स्थिरता सुनिश्चित होती है। वापस लौटने पर बाजीराव को पता चलता है उसकी दोनों पत्नियां काशीबाई और मस्तानी गर्भवती हैं। उसी रात काशीबाई आईना महल में झांकती है और बाजीराव को मस्तानी को गले लगाते हुए देखती है। इससे दुखी होकर वह अपने गृह नगर लौट आती है और कुछ समय बाद अपने नवजात पुत्र रघुनाथ राव के साथ वापस आती है। मस्तानी भी एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वे कृष्ण राव रखते हैं। जब रूढ़ीवादी ब्राह्मण पुजारी एक मुस्लिम माँ के जन्मे बच्चे का हिंदू नामकरण करने से इनकार कर देते हैं, तो बाजीराव दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा करते हैं कि उनके बेटे का पालन पोषण एक मुस्लिम के रूप में होगा और उसका नाम शमशेर बहादुर रखा जाएगा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
3: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और फिल्मी फ्राइडे के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी हम अपने युवा साथियों को सुनवा रहे हैं। कुछ वर्षों के बाद बाजीराव मस्तानी और शमशेर को शनिवार बाड़ा में बने हुए भवन में ले जाते हैं। इस निर्णय से उनके बड़े पुत्र नाना साहेब बेहद नाराज हो जाते हैं, जो सतारा में अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे हैं और मस्तानी के प्रति गहरी नाराजगी रखते हैं। एक त्यौहार के दौरान काशीबाई को मस्तानी और शमशेर की हत्या की साजिश का पता चलता है। वे तुरंत बाजीराव को सूचित करती है, जो हमलावरों को रोकते हैं और मस्तानी को उसकी सुरक्षा के लिए एक अलग महल में ले जाते हैं। निजाम के पुत्र नासिर जंग के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बुलाए जाने पर बाजीराव ने सैन्य रीति रिवाज के अनुसार युद्ध में जाने से पहले काशीबाई का आशीर्वाद मांगा। काशीबाई ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन शांति से उन्हें बताया कि उनके विश्वासघात ने उनका दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया है और उनके स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने बाजीराव को अपने निजी कक्ष से हमेशा के लिए निकाल दिया। बाजीराव के युद्ध क्षेत्र जो बाजीराव हैं वो युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होते हैं तो नाना साहेब और राधा भाई उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए मस्तानी और शमशेर को एकांत कारावास में डाल देते हैं। अपने परिवार के विश्वासघात का पता चलने पर भावनात्मक रूप से क्षत विक्षित बाजीराव नासिर जंग को युद्ध में हरा देते हैं, लेकिन उन्हें गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचता है। वे जानलेवा बुखार से ग्रसित हो जाते हैं। नदी के किनारे सैन्य शिविर में तैनात बाजीराव का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगता है। काशीबाई को उनकी देखभाल के लिए वहां भेजा जाता है। नाना साहेब को वो आवश्यक पत्र भेजकर मस्तानी को रिहा करने का आदेश देती है। आगे कहानी में क्या होता है एक गाना सुनवाते हैं और उसके तुरंत बाद लौटेंगे कहानी के साथ।

इस कहानी में उन्हें यह एहसास होता है केवल उनकी उपस्थिति यानी काशीबाई की उपस्थिति ही उन्हें बचा सकती है। नाना साहब उस आदेश को रोक देते हैं और केवल युवा शमशेर को रिहा किया जाता है और मस्तानी को जंजीरों में जकड़े रखते हैं। तेज बुखार और मति भ्रम के किनारे व्याकुल बाजरा और नदी के किनारे दम तोड़ देते हैं, जबकि कैद में बंद मस्तानी भी उसी क्षण दम तोड़ देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ। 6:30 पर मौजा गरैंदियां सुनवाया जाएगा। शाम 7:00 के समाचारों में पहले 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है मैंने प्यार क्यों किया। 9:30 पर कारवां सुरों का ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से एशियाई खेल 2026 के डेली हाइलाइट्स पेश किए जाएंगे। चित्रपट संगीत के अंतर्गत रात 10:30 पर पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, ये तो थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनो सखी। कल शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ। ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, जिसके लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वविद्यालयों से प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने आज सोलन में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के एक कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र को संबोधित किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है और सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल अगले वर्ष तक आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा।
1: जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने एक निश्चय किया था कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। यही परिणाम है कि आज हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है और जीत जीती है। 2027 तक हमारा प्रयास है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और इस लड़ाई को आत्मनिर्भर की लड़ाई को लड़ने के लिए अभी हमें बीबीएमबी का जो एरियर है जिससे कि 500 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है उसका जजमेंट रिजर्व है उसका इंतजार कर रहे हैं, वाटर सेस का इंतजार कर रहे हैं और शानन प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये जो पानी है यही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके और सभी प्रकार की आयन से तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपया हमने बचाया।
0: बाद में मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के सराहा में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले के समापन समारोह में शिरकत की और क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सीमा पर बनने वाले किशाऊ बांध के विस्थापितों के हितों की रक्षा की जाएगी और उनकी मांगें पूरी होने के बाद ही विस्थापन किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बांध से हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड राज्य के अधिक लोग स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर चंबा जिले से संबंध रखने वाली एथलीट सीमा कुमारी को बधाई दी है। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ की स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा कुमारी ने देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है और उनके खेल प्रदर्शन से राज्य के अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों को उनके अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है और इस संबंध में दावों का निपटारा तय समय में किया जाएगा। उन्होंने आज चंबा में एक बैठक में अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि इस संबंध में उपमंडल और जिला स्तरीय समितियों की बैठकें भी नियमित समय में आयोजित की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बद्दी की एक प्रख्यात निजी कंपनी के सहयोग से सोलन जिले के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सायरी में आज एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें 30 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 600 से अधिक लोगों की चिकित्सा जांच की। खंड चिकित्सा अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान मुख्य रूप से महिलाओं में कैंसर जांच के लिए मैमोग्राफी परीक्षण किया गया और आंखों व हड्डियों की जांच भी की गई।
2: आज हम धरातल पर जो गांववासी है उन तक कैंसर की बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जांच करवाने का जो जिम्मा है उसको अमली जामा पहना रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और आंखों की विस्तार पूर्वक जांच, साथ ही साथ मुफ्त चश्मों का वितरण, इसके अलावा सारी ब्लड की रिपोर्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर और अनेकों प्रकार की बीमारियां, समस्त वर्ल्ड कैंसर सेंटर जो जालंधर बेस्ड टीम है 30 मेंबरान इनके आए हैं। कैंसर जैसी बीमारी को ढूंढने के लिए वर्धमान ग्रुप जो है एक बहुत अच्छा उमदा काम करवा रहा है।
0: इस दौरान संस्था की ओर से लोगों को 400 से अधिक निशुल्क चश्मे और अन्य चिकित्सा उपकरण भी बांटे गए। काहला पंचायत के प्रधान राजेश ठाकुर और सायरी के प्रधान वीरेंद्र जसवाल ने शिविर के सफल आयोजन के लिए संस्था का आभार जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 और 29 सेकंड हुए हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ के साथ।

सुरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाया दो गाना अभी आपने सुना। आर डी वर्मन का संगीत था आनंद बख्शी के बोल, और अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया ये नगमा था।

शाम के 6:18 और 9 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरमई सांझ। दर्द फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, नक्श ललाइलपुरी के बोल संगीत हयाम का, लता मंगेशकर की मीठी सी आवाज इस गीत में है।

श्रोताओं कार्यक्रमों संबंधी एक सूचना सुने। इस रविवार दिनांक 27 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा गठिया, कारण और बचाव। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत रैना, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय महाविद्यालय से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय फिर से नोट करें। रविवार 27 सितंबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और 103.4 मेगाहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी से सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी धर्मशाला समय आपने ट्यून इन किया है। फ्रीक्वेंसी है वही जानी पहचानी 103.4 मेगाहर्ट्ज। शाम के 6:23 और 23 सेकंड हुए हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुरमई सांझ।

खुददार फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार लता मंगेशकर की गाई ये गीत है। राजेश रोशन का संगीत, मजरू सुल्तान बुरी के बोल।

इस गीत के साथ आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे श्रोतियां दा स्वागत करदे ने टियाले पर। किसान साथियों, अज टियाले पर बड़िया दिनों बाद आई है तुहांदी अपनी शन्नो ताई, कहने मिंजो पचां चलिया लोका पाऊ।
1: राम राम ताई, खरे ठीक ठाक?
0: वधिया दिख मिया पाऊ, बड़े बड़े दिनों बाद पुजी है, कहने थोड़ी जान भी खरी नहीं ना।
1: ए क्या ताई, चश्मा लगी है तुहायो?
0: चश्मा तो चलो लगा नहीं, तो चलो आम ही गल होई अजकल, पर खंग बड़ा भारी बुखार।
1: हाँ, ये दिखा ना अंबर है भी संजय टाइम में उंदे उंदे देती है छिट्टा ना।
0: आज तो मैं बोलती मौसम ठंडा हुई है, कने जड़े बुखार आंदा जड़ा चले अनेक सारे पहाड़ रोला।
1: हाँ जी,
0: ये कुछ भी पूछा है तो बोला दे पे खंग बड़ी परी बुखार, ता कई गला दे पे बोले कि बैरल चले आ।
1: बैरल चले आ।
0: हाँ, ता इस वजह ते मैं हिसाब लाया पे सारे दी गठ है बजियो।
1: सारे दी बजियो,
0: और कने बुरा हाल है, पर इसका इलाज यही है पे ज्यादा तो ज्यादा मैं बोलती घर ही रहा, कने ज्यादा भीड़ भड़के च ना जान तो फायदा है, कने जेड़े सोचा दे जे अस्पताल आ जाना ते थू लैनी लगियां।
1: पक्की गल लाई लैनी लगी है, अगर अस्पताल आए तो हाँ जा देता, ये बुखारे दे जेड़े इनसे ज्यादा केस हुआ करते हैं।
0: बिल्कुल हाँ,
1: तो अपना ध्यान जेड़ा से यहाँ के श्रोतें रखना, कने मौजा रौनक की गल करिए ग्राएं च मौजा रौनक लगियां, कहीं कि यहाँ के जेड़े मौसमी फल होइए, अमरूद होइए, ताई दिखा है तुम चमरक भी लेंदे थोड़े देर, मैं तुम्हें मैं ताई खाँदी होंगी चटनी चमरक।
0: चमरक तो चखियो थे मैं कल ना, इसने थोड़ी खंग भी वधी है, पर चलो स्वाद बोलते फल कोई भी है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मौसमी का चखना ही चाहिए,
1: चखना ही चाहिए। हाँ जी,
0: ये चीजा बनिया तो इन्हों का जो हाँ सेवन नहीं करे नहीं खाँगे ना, ता है क्या पता, कने आधे बच्चे तो मैं बोलती इन्होंने चीजा का पता ही नहीं होना।
1: बिल्कुल ठीक गला दे।
0: कने एक गल दिखा पिछली बारी तिनी जोधा राम है ना, वो टियाले ते परले पहा दिखा चमरखे का बूटा भी तैयार करी थी।
1: अच्छा अच्छा, ये तो मैं हूं ही देखा,
0: खरा हो पिया, कने जे खरा रहा तो अगले साल इन मैं बोलती फल भी दे देना।
1: फल भी दे देना है ना, ता मंजो लाने की जरूरत नहीं रहनी, तुम टोया टियाले ते जड़ा से मिली आ करने चमर।
0: पर टियाले ते ता मिलने जे दी देखभाल कर गे बचांगे।
1: हाँ, बूटा बोलते लगाना तो आसान होंगे पर तुसी संभालना जड़ा से मुश्किल होंदा है ना।
0: सब ते बड़ा काम है संभालना, क्योंकि हुण टियाले वाला जड़ा रोड कने बत्त है ना, ये भी हुण सहनी रही हो पहले वाली, हुण इत्थों ते भी हर कोई लंघा दा, छोटे मोटे स्कूटर गड्डिया भी लंघियां, कोई डंगर बच्चू भी चलिया बाहर,
1: डंगर बच्चू भी चलिया। हां जी हां जी,
0: ते तिस्ते भी थोड़ी दी सांभ संभाल है करना पौनी। कने सांभ संभाल करगे तो आ खांगे, कने गां दे खांदे बच्चे भी खांगे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ताई तो हाँ ठीक गला दे, पर ताई अगर हाँ गलाइए चश्मे की गल मैं ता की ही कि दिखा अजकल दिखने मिला था कि यहाँ के न्याणे जंस है फोने पहा ज्यादा लगा दे है ना, कने छोटी उम्र च इतने चश्मे भी लगी आ दे।
0: बिल्कुल, मैं तो बोल दी पे हर घर घर ही स्यापा हुई है,
1: स्यापा ही हुई है ना।
0: हाँ,
1: एक गल ये भी दिखने वो दी कि पहले जेड़ा सा फोन आपू ही तुहां पकड़ाई दिया दे न्याणे आल, कने फिर बोला दे जी साड़ा मुंडू तो बोले फोने ही नहीं छड़दा या साड़े जेड़े न्याणे से फोने नहीं छड़दे है ना।
0: बड़े बढ़िया गल गलाई, कने इस दे जिम्मेदार भी आहा तुहान
1: आहा तुहान। हां जी हां,
0: अपने सुखे हो ना जी,
1: अपने
0: सुखे कुछ कमाना है या कुछ ही जाना है, हां बच्चे गला दे पे दो कड़ियां ना फोन ने दिख लिया, कने हां कम में जाई होंदे,
1: कम में जाई होंदे। हां जी, फोन पकड़ाइए, कार्टून लगाइए, तिसिया कुछ भी लगाइए दे ना।
0: हां, तो दिखा से छोटी छोटी आदतां आहा पा दे ना, ऐसे तीन तक कसूर नहीं है,
1: तीन तक कसूर नहीं, सही गला दे तुहां,
0: तो तीन तक से चीजा तीन दी आदतां ने जोड़ा दियां, कने से तिहा चीजा पर निर्भर हो याद,
1: निर्भर हो याद। हाँ जी हाँ जी, तो कुछ ही ना कुछ ही अहाँ तुहाँ लोग ही ताई जिम्मेवार, तुहाँ अहाँ दा गलाने दा मतलब ये है कि अहाँ दे जितने भी श्रोतन से न्याणे हैं जेड़ा से बच्चे ते फोने ते जेड़ा से न्याणे हैं दूर ही रखन फिलहाल,
0: दूर रखा, कने जरूरी काम है पढ़ाई दा कोई या कोई जानकारी तिने तुहाँ दसनी है समझानी है, ताते दा तुहाँ तुहाँ बोलते साथ ले सकदे।
1: हाँ, घंटे 15 मिनट आधा घंटा जेड़ा टाइम तुहाँ बंधी जाना भाई, इतना कि हाँ दिखी लिया है ना,
0: आदत नहीं बनानी
1: भाई, आदत नहीं बनानी। हाँ जी हाँ जी,
0: यह चीजें जरूरत है हिसाब इस्तेमाल करा था, हर चीज़ का फायदा है, कने बेजरूरत इस्तेमाल कर गए तो मैं बोलती चश्मा हूं तो हाँ इस उम्र लगे ना, हूँ गांह के बच्चे तो मैं बोलती भवे साले 6 महीने लगी आदे,
1: ये भी पक्की गल गलाई तो
0: है ना।
1: हाँ जी हाँ
0: जी, दिखा बड़ियां मतलब गहरिया गल्ला ने जो सोचन तो बड़ा इन्हों का फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, पर सह बोलते सारी चीज़ा जिम्मेदार हाँ आपू इंसान जड़े से खुद हैं।
1: हाँ, टेक्नोलॉजी तो वही करती करती यदि कन्नै बड़ियां सारियां बीमारियां भी जड़े से वो कर दियां है ना, कई कि दिखा मानसिक बीमारियां भी यहाँ तुहां लोकां ज्यादा हो दियां, पहले कुछ सुनने मिलता है कि कोई सुसाइड कर लिया या कुछ हो याद है ना,
0: इन चीजा ते दिखा बच्चे चिड़चिड़े हो याद,
1: चिड़चिड़े हो याद। हाँ जी हाँ जी,
0: ये चीजा बड़िया बरी मतलब गलत प्रभाव पा दियां, तां उम्मीद करनी है भाई इन्हां चीजां ते अपने बच्चे बचाई के रखा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो हाँ आशा करते हैं नहाँ दे जड़े श्रोता ने इन छोटी छोटी गल्लां पर ध्यान देंगे, कने उन्हां टियाले पर शामिल करना एक प्यारा दिया लोक गीत, तो सुनते ने प्यारा दिया लोक गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
2: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
1: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
3: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
4: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: जी किसान साथियों, दिखा तो हाँ बड़े बोले बांके बांके स्नेह भी सुने, कने लोकगीत भी सुने, कने उम्मीद करनी है भाई तुहें लोकगीत तो बांका लगा ही होना है, कने जिहड़े स्नेह होंदे ना ये भी बड़े जानकारियां ने भरे होंदे, इन्हां विच भी तुहां दे फायदे की कोई ना कोई गल होंदी, तो इन्हें भी जरूर तुहां सुना करा, कने इन्हां पर अमल करा करा। लोका बाहू, इस ते बाद जिहड़ी जानकारी अपने श्रोतिया ने अपने किसानों ने साझी करनी, हाँ तिहां दा विषय दीन दयाल उपाध्याय।

0: ग्राम ज्योति
1: योजना
0: योजना।
1: दी। हाँ जी हाँ जी ठीक ला दे ताई तुहां ता ये योजना दी शुरुआत जड़ी है सह वही 2014 च है ना।
0: हाँ जी
1: तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ताई यही है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था जो जड़ा सह मजबूत करना है ना। देखा
0: बिल्कुल
1: अगर समय च अहाँ ताई थोड़ा देर पहले चली आते हैं तो अहाँ के ग्राएं च भी जड़ा सह लो जड़ी है सह डिम हो जाती है ना। कन्नै उसके बाद जो गल करते हैं तो बड़ी सारिया बिजली ने जुड़ी समस्या जोड़ा सह अहाँ के किसाना भी रही है ना। तो इस
0: जी
1: योजना के अंतर्गत जोड़ा सह फीडर जोड़े सह अलग हुई है खेती ताई अलग हुई है कने घर दी ताई जोड़ा सह अलग हुई
0: लग
1: है
0: ये
1: ना।
0: बड़ा अच्छा फायदा होया कजो कि एक ही फीडर बोले सब ना पाहे था ना
1: हाँ जी हाँ
0: कतिस
1: जी
0: ते। हाँ सारे जो ही बिजली दी कई समस्या आंदी थी जियां बिजली डिम रहनी या पूरी तरह बिजली नहीं पूजी पानी। कने हूं तो दिखा मैं बोलती सोए बिच 80 कम ऐसे न खेती बाड़ी दे जेड़े पूरी तरह बिजली पर ही निर्भर हैं।
1: बिल्कुल जी
0: कोई
1: बिल्कुल
0: सिंचाई होइए कोई कई मशीन ऐसा चला दियाँ खेतीबाड़ी बिच जड़ियाँ बिजली ने चल दियाँ तो इस कम्मे दी बड़ी जरूरत थी। कने फीडर लग होना बड़े जरूरी थे।
1: बिल्कुल ताई। कने इदी कन्ने गल करिए ता इस योजना च जेड़े तुहांदे पुराने ट्रांसफार्मर होई या बिजली दी पुरानी लाइनां जित्थों सुधार दी जरूरत थी सह भी होया है ना।
0: जी
1: कने नए बिजली दे कनेक्शन होइए ग्रामीण च विद्युतीकरण होया। कने गल गलाइए ता बिजली आने ने ग्राएं दा भी जेड़ा सा बड़ा सारा विकास जेड़ा सा होया है ना।
0: विकास तो दिखा है सारे दूसरा था कि हूँ छोटे मोटे काम तो क्या बोली सकते बड़े अच्छे अच्छे काम हाँ दे अपने घरे ग्राएं दे नेड़े नेड़े हो या दे
1: हाँ जी हाँ जी
0: ग्रां दे अख बैक दिखा कोई बैंक ब्रांचा खुली ही आ स्कूल हैं स्वास्थ्य केंद्र खुली हो तो तिथु भी बिजली होने के कारण हाँ दे कई काम तिथु यार लो या दे।
1: हाँ जी अहाँ दे पंचायत भवन हुई है उत्थी भी जेड़ा सा बिजली आने ने जेड़ा तिथु कंप्यूटर भी लगी हो है ना।
0: बिल्कुल
1: कने तिथु जेड़ा परिवार नकल नुकल सब कुछ काम जेड़े तो हाँ दे पंचायत घर ची जेड़ा सा हुई आ कर देन है ना।
0: बिल्कुल कने दिखा समय दे हिसाबे ने विकास हुआ था तो तिसे हाँ समझी सकते कने आहे तिसते फायदा भी हुआ था।
1: जी जी बिल्कुल। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जी है सह बड़े सारे लोगों के जीवन च उजाला जड़ा सा लेके आई है ना।
0: कने हुण तां दिखा ग्रां गलाने बोलते पे ग्रां ग्रां है फलाना हुण तां ग्रां विच भी तुहां नजर दिया तां हर पाहे लाइटां दी चमचम लगी हो।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कोई गलियां दिखा था ते तुसा दिखा दुइयां लगियां सोलर लाइटां लगियां लोगों के घर घर दुइयां बिजलियां जड़ियां है मीटर वाली होंगे सह लगियां तो मतलब गलाने का हूँ कोई भी क्षेत्र लगभग बिजली ते तमें हिसाबे ने अछूता नहीं रहा।
1: बिल्कुल ठीक ला दे ताई तुहां कने जेड़ा इस योजना दा मुख्य उद्देश्य था कि 24 घंटे ताई बिजली जेड़ा सा ग्राएं च जेड़ा सा
0: उपलब्ध
1: उपलब्ध करवानी है ता सा
0: करवानी
1: जेड़ा पूरा लगभग जेड़ा सा हो ही गया है ना।
0: कने इस योजना ते तिथु तक भी बिजली पुजी जिथु कदी सोचे नहीं था कुणी।
1: हाँ जेड़े यहाँ दे दूर दराज दे क्षेत्र ना है ना।
0: बिल्कुल ऊंचाइयां पर हैं ऐसे ग्रां भी जिथु कदी कुणी शायद सोचे भी ना हो बिजली पुजनी तिथु तक भी सरकार बिजली पुजाई। कने अज तिथु भी हर कोई लाभ लै दा पढ़ने वाले बच्चे भी लाभ है आने जाने कई सुख सुविधा हुई हैं कोई चीज़ा ऐसी ने बिजली ने चलने वाली हैं तो इस ते हाँ जो बड़ा फायदा होया। कने कम कार भी हाँ जो बड़ा बढ़ावा होया। कने हुण दिखा ग्रां ग्रां बिच दिखा तो हाँ ऐसे कम छोटे छोटे लघु उद्योग भी लोग शुरू करी थे सह घर ग्रां ते लोग शुरू की थे तो बिजली आने ते हर तरफ फायदा ही फायदा।
1: बिल्कुल ठीक गल तुहां गला दे जी ताई दिखा कोई अगर रोजगार ताई आटा चक्की चलाई होगुन की है ना। तो
0: बिल्कुल
1: आटा चक्की ताई भी जड़े से बिजली ने मशीन आई आजकल तो और बड़ी सारे जड़े उपकरण खेतीबाड़ी दे जड़े से
0: बिजली ने चला दी
1: बिजली कन्ने
0: जी
1: चला दे ती दिन यहाँ दे किसान भाइयों भी जड़ा सा फायदा हुआ था है ना।
0: कने एक अजकल थोड़ी दी और गल चली हो बे दुए दिखा स्मार्ट मीटर भी हूँ लगभग लगते आए
1: लगते
0: सारे
1: आए। हाँ जी
0: पास्या
1: हाँ जी हाँ जी
0: तत्तीसते भी सुनने चाहिए ओदा पे चलो ग्रां बिच थोड़ा लोका समझने होता देर लगा दी है गल यो पर बोला दे पे इसका फायदा ही होना गां का जो कि अहाँ जड़े अहाँ छोटे की गल नहीं करिए अहाँ बड़े बड़े जड़े स्तर पर काम करा दे बोलते कई जगह बिजली चोरी होती कई गल होंगे तो इन्हों मीटर लगने ते तिहत बिच
1: रोक
0: काफ़ी
1: लगनी
0: फर्क पौना है
1: जी जी जी
0: तो चलो अच्छी गल है कोई अहाँ हित बिच गल हो दी तो हाँ उस चीज़ स्वीकारना चाहिए कने जलू तिदा फायदा अगर पूरे जनहित च होता तो सह लग गए तो सारे वास्ती फायदा देने वाले होने ना।
1: बिल्कुल ठीक गला दे ताई तुहां दिखा दीनदयाल उपाध्याय योजना दे अंतर्गत जड़ा ऐसा है ग्राएं च जड़ा ऐसा विकास हुआ करता है ता उना हां ट्याले पर फिर ते शामिल करना एक प्यारा दिया लोकगीत है ना। ता
0: जी
1: देर नहीं करदे कने ताई सुणांदे अपने
0: प्यारा दिया
1: श्रोतें प्यारा
0: लोकगीत
1: दिया लोकगीत।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी तां तुहां सुनिया प्यारे देर लोक गीत, कने फिर सुनाए हां तुहां कुछ जरूरी सने। तां लोक बाऊ इस ते बाद अहां दा जेड़ा

0: इसी प्यारे दे मिठे दे लोक गीत कन्हां दा टियाले दा वेला जिहड़ा साहित्य संपन्न होता जाने ते पहले दस्सदी इह कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दिता सुनील कुमार होर प्रस्तुति जिहड़ी इस जतिंदर पाल सिंह होर दी उन्हां दुनिया दी अनुमति। अच्छा
1: अच्छा
0: जी
1: जी, जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजांग रैंदियां। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे ही किसान बागवान भाइयों भैणों का हाँ अपने इस दिहाड़े पर स्वागत करते हैं। कने एक बारी फ्री ते मैं तुहांदा लोका पाऊ। कने अज है मुंजो कने सन्नो ताई आईया आईया
1: ओ आई आई आई मैं बड़ परिकाल कने जरा कि बुन्ने लोई थी सदा दी भैन बोले पे चाहे कुट पी आ।
0: अच्छा
1: कहे कि थोड़ी देर हाँ भी मिली आंदा ना मौका।
0: हाँ हाँ
1: ता क्या करना होंदा जी तकर खबर सुन दे लोग ती तकर मैं बोली चाहे कुट पी आंदे ना।
0: बिल्कुल पुराने लोग कहने चाह कुछ छुट दी है ना।
1: चाह तो हूँ छुटनी लकड़ूंगा पर मैं बोला दी पे चलो है कि टाइम पास हो जाता।

0: सुने था ये ग्रीन टी पीना शुरू करी थी आजकल।
1: ग्रीन टी पी हड़ी होना चाह मिली
0: खायो
1: आसाई बड़ी हुंदी।
0: कने अहां गल करी अपनी खेती बाड़ी दे तो दिखा ताई खेती बाड़ी च अजकल जड़ा सा अहां दे किसाने सरे खुरकने जड़ा सा बेल नहीं मिलना दिया
1: नहीं
0: ना।
1: मिलना दिया
0: कहे
1: हाँ
0: कि दिखा पशु धन ताई जड़ा सा बीड़ा दे पट्टियां दे घाए बढ़ने दा काम पे उपरे ते जड़ा मक्कियां दे खेत खाली होयो है ना तिथु तिना यूं जड़ा सा सुवारने का काम किया। दिखा मैं भी गया हाँ मैं थोड़ा जि अपना छलैटा बढ़िया कने पट्टियां च फुलणू इतना तैयार होया कि पूछा मत ताई
1: तो फूलों में तो मैं बोलती हाड़ी फसल भी अद्धी खराब करी थी ना।
0: सह कौन भाई आंदा होगा मुझे तो ये समझ नहीं आई जे
1: उस
0: दिन।
1: ये बोलते ना वारी चीजा कभी बांधा कोई
0: हाँ
1: ये वारी चीजा ऐसी फल दी फूल दी पे ना कोई खाद लगती
0: अपने आप ही तैयार
1: अपने
0: हुई।
1: आप कने आह जड़ी खाने वाली फसल होंगी ना तो है भी अद्धी असै खराब करी दी
0: खराब करी दियां ठीक
1: ये
0: ला रहे तो
1: उत्पादन से भी बड़ा फर्क पौंदा कने दिखा कई बार हाँ कोई चीज लाई होंगी प्याज ही लाए कुछ भी लाए तो बोलते नहीं होए तिना कता होना तिना प्याजा बच्च अद्ध सुध से फूलन होंगे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। ताई एक गल मैं एक और भी नोट की जियाँ स्प्रे करते ना फलूणुआ फलूणुआ दी बोलते नहीं खत्म हो जाता है पर सह दिखा मैं तो इसके बाद जड़ा सह दुआरी लूंगा तो सह बराबरी हुई है।
1: सह पता नहीं भाई क्या हिसाब होगा पर ये चीजा कुछ ऐसा बोलिया बूटियां होंगे ना इन्हों का तो मैं बोलती अंत शायद ही मुश्किल है पर ज्यादा तो ज्यादा ये है भाई इन्हें अपनी खेती बाड़ी के अखे बखे तो हाँ पैदा ही मत होना दिया
0: पैदा ही मत
1: कने
0: होना
1: जे
0: दे।
1: एक बार बधिए तो ना बीज तो ना होंगे ना सह आपू ही सुखा द आपू ही जड़ा द सह बार
0: हवा
1: बार
0: ने उड़ता जा था कने
1: लगा
0: और
1: द
0: नहीं खेते भी लगा था है ना।
1: हाँ तो इस तरह दिखा कने इन्हें अखे बखे तो हाँ कोई बेल बूटा लाया हो ना सह भी नहीं बधता ज्यादा बोलते इन्हें बूटियां कने ना फुलनुआ च इतनी मतलब इन्हों क्या बोलते नकारात्मक होंगी ना इन्हों कि अहाँ की फसल ही भी इतना सह बोलते खत्म करी दा
0: ते तो मैं मिंजो तो लगा भी ये फुलणू भी लगा थोड़ा देर मैं धुप्पा च लग्या है ना।
1: तो इस बोलते चक्कर लगता कजो कि इस बिच जड़ी इन्हों का फुल कने होंगे ना पत्तर जे तुह इं बतौड़ी करी सींगा माड़ा मोटा तो तुहें इसते भी सिरे गोई आता
0: हाँ जी
1: तो बड़ी
0: हाँ
1: जहरीली दी चीज़ होंगी कने जानवर खाई लैन बकरियां खाई लैन या कोई पशु खाई लै तो हाँ कई बार घर भी देखा कने सुने भी भाई जानवर बचाना तक मुश्किल हो जाता।
0: मुश्किल हो जाता ठीक ला दे तो दिखा ताई अज दे कार्यक्रम च हाँ एक जानकारी भी साझा कर दे सह कुण वाली अज
1: आज जड़ी जानकारी है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
0: जी।
1: तो दिखा ये जड़ी जानकारियां तुहाने साझिया कर दे ये बिल्कुल अहां दियां अखे बखे दे कम्मा कारा हिसाब ही होंदियां कने इन्हां ते अहां दे किसानां अहां दे श्रोतियां भी कई गल्लां समझने वाली होंदियां ते इन्हां दे से फायदा देने वाली होंदियां तो ये जड़ी योजना यहाँ की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 हुई थी कने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दे अवसर था तैड़ी तैड़ी की घोषणा की थी
0: जी मकसद यही हताई कि ग्राम की पंचायत है जड़ा सा कि मजबूत किया जाए है
1: बना
0: ना
1: जी
0: जी।
1: कने 2025-26 ते लेके 2029-30 तक मंजूरी दी थी इस तक हाँ अपनी पंचायत जड़ी बिल्कुल मजबूत बनानी है ना
0: अच्छा तो देखा इस जड़ा नारा है ताई सा है मेरा गांव कने मेरी सरकार है ना इस
1: बिल्कुल
0: जड़ा पैहा ऐसे केंद्र कने राज्य सरकार दोनों मिली के जड़ा
1: कम
0: सा
1: करे
0: बहन कर दे है ना
1: जी
0: कने हिमाचल दे पहाड़ी राज्य दी गल करिए ते इत्थी 90% ताई जड़ा सा केंद्र कने 10% ताई जड़ा सा राज्य बहन
1: राज्य
0: करता है ना
1: जी
0: कने पैहा सीधा जड़ा सा पंचायत दे कम्मा कारां च लगदा कने इस दिखा ग्रां क्या क्या फायदा मिलता था इस अहां दे सरपंच हो ये वार्ड मेंबर हो ये तेना ट्रेनिंग भी मिलती है ना
1: जी
0: प्रधान ने ये भी सिखांदे कि तुहां बजट कियां बनाना है पैहा कुथू लाना है ना
1: बिल्कुल
0: इस।
1: ग्राएं दे विकास च भई
0: हाँ जी हाँ जी कने पंचायत घर च अगर पंचायत भवन नहीं है तो तिदा निर्माण किया जाना चाहिए उत्थी जड़ा सा कंप्यूटर होना चाहिए इंटरनेट होना चाहिए है ना।
1: बिल्कुल जड़ा ये अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि पंचायतों की क्षमता जी तिहा विकास करना
0: बिल्कुल जी बिल्कुल कने सबसे बड़ी गल है यहाँ दी महिला युवा जड़े महिला प्रधान तेना जड़ा सा इस दे अंतर्गत स्पेशल ट्रेनिंग भी जड़ा सा मिलती है ना
1: बिल्कुल
0: ता बड़ी बढ़िया कने बाकी ये है कने इस ये भी होंगे ताई कि तुहां तुहाड़ा पंचायत ता ही मजबूत हो सकती जालू तुहां अपनी पंचायत च सहभागिता लेंदे है ना
1: जी
0: बोलते ना जालू जलास होंगे तो सारे जड़ा सा
1: जाना
0: जाना
1: चाहिए
0: चाहिए है ना
1: बिल्कुल करे कई बार हाँ कुछ अगलाइए जाना तो बोलते हाँ कह जाना हाँ दा के काम दितू
0: हाँ जी हाँ जी
1: जलू हाँ जलासाएं जांगे ते तू हर दिन हर जलास बीच तुह कोई नई गल सुनने मिलती
0: सुनने मिलती हाँ जी हाँ
1: कने
0: जी
1: तुहां दा कोई अपना घर ग्राएं दा विकास दा कोई ऐसा मुद्दा तो तुहां इस जलासे बीच तुसी उस दिन सारे सामने रखी सकदे
0: रखी सकते हाँ जी हाँ जी
1: फिर दिखा पंच प्रधान ने भी बत्ता संदे कोई काम दसीए तो बोलते तुहां जलासे आए थे
0: जलास से आए हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: तो कई गल्लां हादियां बोले बजते भी नहीं हो पाते कम तो तिन्हें मौका ही नहीं देना चाहिए कने जरूर घरे का कोई एक मिंबर जरूर जा
0: बिल्कुल जी बिल्कुल तो ये अभियान जड़ा सा बड़ा बढ़िया कने बांका है अहाँ दे ग्राएं ताई अहाँ दा ग्राएं दा विकास होगा तो जड़े अहाँ दे जड़े न्याणे से सह रहे हो जा दे ना तो तेना भी
1: जी
0: रुकना है ना अगर
1: बिल्कुल
0: ग्राएं ची सारियां सुख सुविधा मिली जानी है तेना रोजगार मिली जाना तो कहे जाना।

0: ना, तिथु दिखा सारा चाल दिखा आबादी कितनी बदी है ना।
1: कने मैं बोलते बाहर जाई करी सह पैसा कमाई भी लिया तो सह फिरी दो पैसे ना बचन तिदा भी कोई फायदा नहीं है। कने घर से दूर रहना सह कई गल्ला हों सामना करना पैंदियां ना कोई ढंगे का खाण ना रहन कने बाहर जा तो दिखा कई कुछ अजकल बाहर जाने जोगा नहीं रहा बच्चा।
0: कहना सब तो बड़ी गल तो आई हवा पानी की होंगी है ना। बाहर
1: बिल्कुल
0: अपना इतों का तुह देखा कितना स्वच्छ हवा पानी होंगे तो तुम बाहर जाता तो इतों एकदम जालू तुम जाना तो कई बार अहम न्याणे
1: बीमार भी हो
0: बीमार
1: जाते
0: भी हो
1: जी
0: जाते
1: जी
0: है ना, फिर घर दिन आना पौंदा है ना।
1: तो बिल्कुल अहाँ जो ग्रां है अहाँ जी पंचायत
0: ये
1: इन्हों का भी
0: सशक्त हो गई
1: सशक्त हो गई तो इतों ही बड़ा कुछ अहाँ के गांव की पीढ़ी है वो घर द्वारा ही मिलना।
0: मिलना। हाँ जी हाँ जी
1: तो बिल्कुल अच्छी जानकारी है कहाँ चाहते भी ऐसे ऐसे अभियान आते रहन ताकि हर पास विकास हो। अहाँ अपने ग्रां कने पंचायत की गल करने पहले तो सब तो पहले ये विकसित हो गई तो अहम मैं बोलती हाँ ग्रां की तो हूँ देखा है कई चीज़ा हाँ ग्रां में नोई दिखने मिलदियाँ
0: बिल्कुल जी
1: हूँ
0: बिल्कुल सर।
1: सह पंचायती गोरा कने नालियों च हूँ तो नहर गुबारियां भी नहीं रही पंचायत समय समय पर कोई दिखाए लाइटा लगा दियाँ
0: लाइटा लगा दिया
1: कोई
0: जी।
1: पुलां कंडा कोई तेनाली जाले लाईते कने कोई जी कूड़ा फेंकता है बेनजायज कुथी तो पंचायत का बकायदा तो तुसा बोर्ड लाओ कि जे कोई कूड़ा फेंकता तो हाँ जी तुझे जुर्माना रखिया।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तो इस ते दिखा लोगों ये बोलते ना थोड़ा चाहे पूरी तरह तो नहीं बोल सकते पर कुछ प्रतिशत लोगों में एक डर भी पैदा होया कि हाँ ये काम कर गए तो शायद हाँ अरजाना भरना पौना है
0: कने होना भी चाहिए
1: होना
0: है
1: चाहिए
0: ना।
1: जी जी
0: तो अपनी गल्लां बातें ताई इत्थे विराम दिंदे ने, कने सुणांदे ने इक प्यारा देया लोक गीत।
1: जी

0: जी श्रोताओं, ए प्यारा दे मिठा दे लोक गीत तुहां तक पुजाया कने आशा कर दें तुहें पसंद भी आया होना है ना।
1: जी
0: तताई गां बद्दे हुण कार्यक्रम च कने बेला ओदा भेंट वार्ता दी अंक दी जानकारी सांझा करने दा है ना।
1: बिल्कुल, कने दिखा जी जियां हां गलबात करदे जांदे, लोक गीत सुणांदे जांदे ना,
0: हां जी हां जी,
1: तां खेतीबाड़ी कार्यक्रम विच ए दौर भी आई जांदा भी हां इक जानकारी भी अपने श्रोतें अपने किसानां ने सांझी करनी हुंदी। तां इसे ही कड़ी विच जिहड़ी अज जानकारी है, अहां ने एक उन्नत महिला किसान जुड़े हुण, हाँ आपू भी सुननी गलबात करना है, अपने श्रोतियां भी सुनानी।
0: जी तवा सुनते ने भेंट वार्ता दा अंक।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए, चाहे वह विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्नै कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत महिला किसान अहां कन्नै जुड़ा करदे हन, ओवा करदे हन इन्हां कन्नै गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना सबसे पहले नां दसा कने कुतु तुहां दे घर न?
3: मैं शिवाली ग्राम पंचायत कटोरा ब्लॉक नगरोटा सूरियां ते।
2: तो शिवाली जी तुहां खेतीबाड़ी कर दे?
3: हां जी सर।
2: जी दिखा खेतीबाड़ी करने ताईयां तुहां वाल जेड़ा सा कितना की जमीन रकबा है?
3: सर जमीन तो साढ़े ले 10 कनाल पर जेड़ी 5 कनाल है हाथ सभी ची खेतीबाड़ी करा दे।
2: अच्छा, बाकी जेड़ी 5 कनाल है सा क्या खड़तर वगैरह कुछ बंजर है?
3: हां जी सर बंजर है, तिस भी चाहां थोड़े मेडिसिन प्लांट लगाने दी कोशिश करा दे की आजकल जेड़ा सा लेडीज जेड़ियां ना सा वो मेडिसिन प्लांट लगा दे तिना ते हां जेड़े सा प्रोडक्ट तैयार करा दे।
2: तो जेड़ा तुहां दस्सिया ना की तुहां वाल 5 कनाल दा रकबा, तिस विच क्या क्या खेती कर दे? तो हाँ
3: इस विच सर हाँ अजकल लगाया अदरक लगाया कि अपने थोड़ी बहुत सब्जियां लगाईया।
2: छली दा बीज कौन लगाया हा? तो हाँ अपना घरे दा बीज है?
3: हाँ जी सारा घरे दा बीज है।
2: अच्छा देसी चिटियां छलियां बांधे की लाल
3: चिटियां सर?
2: अच्छा इस ते कन्ने जी सब्जियां वगैरह भी लगांदे कुछ?
3: हाँ जी सर सब्जियां भी लगाने।
2: इस वेले क्या क्या सब्जियां लगियां तुहां दे सवाड़ुआं च?
3: भिंडियां लगियां, बैंगन लग्यो, कन्ने तोरियां वगैरह।
2: हाँ कन्ने दिखा चलो अपने घरे दी चलो हरी भरी ताजी चलो सब्जी एक आनंद जेड़ा सा कुछ होर है। शिफाली जी जी तुहां दस्या कि तुहां कुछ जियां एक कोई महिला दा समूह ऐसा मिली के जेड़ा सा औषधीय पौधियां पर भी जेड़ा सा काम करा करदे न?
3: हां जी औषधीय पौधियां पर सबसे मतलब कि आजकल जेड़ा सा मिशन धनवंतरी चलिया साडे कांगड़े विच।
2: हां जी
3: इससे जुड़ी के जनानी जेड़ा सा बड़ा भारी महिलाएं जेड़ा काम मिला दा रोजगार मिला दा तिसी ने।
2: अच्छा
3: तिसी ना ते जुड़ी के हल्दी लगाइयो ता हल्दी दा सागे प्रोडक्ट बना दे जियां साबने दा काम चलिया अजकल साडा हाँ तुलसी लगाइयो जिया मतलब जेडी जमीन साड़ी जो तुहां खेती नहीं करदे ते तुहां तुलसी लगाइयो तुलसी लगाई के तिसे फिर यहां अर्क निकालना अर्क निकाल के तिसे तहां साबन तैयार करा दे।
2: जी तो एथु ही तुहां सारा ए काम जिया साबन वगैरा एथु ही तैयार कर लेंदे अर्क कियां निकाल दे तुलसी दा?
3: तुलसी दा अर्क निकालने वास्ते मशीनां लगियां धर्मशाला पंचायत पद्धर च भी लगी मशीन कन्ने फिर एक पट्टा जटियां फतेहपुर ब्लॉक च।
2: अच्छा यानी कि पत्ते पहले तुलसी दे पहले पत्ते इकट्ठे करने हैं ना?
3: हां जी पत्ते इकट्ठे करने या मतलब कि डाल मस मेथी तिना दी हरवेस्ट कटिंग कर लेनी जिना मतलब तिने मस मेथी कटिंग कर ले देना
2: फिर ये इन्हीं सुकाना पोंदे या सिन्ने दा निकलदा अर्क?
3: अर्क निकलदा अर्क जेड़ा से सिन्ने दा निकलना कने अगर जिया जेड़े हुन चले कि कन्ने करा दे हां चाय पर कम जिया हुंदे तुहाडी ग्रीन टी वगैरह है।
2: हां जी
3: ते तिसी पर कम चले तिसी विच हां कैमोमाइल दे लै दे पौधे।
2: अच्छा
3: इक कैमोमाइल हुंदा फुल हुंदा पीले रंग दा तिस दे हां पंखुड़ियां लैनियां मतलब।
2: अच्छा
3: कन्ने दी तुलसी दे पत्ते लैने।
2: अच्छा
3: ਤੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀ ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਪੈਸਾ ਬਣਾਣੀ ਹਰਬਲ ਟੀ ਬਣਾਣੀ ਇੱਕ
2: ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਸ ਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿ ਸੋਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ?
3: ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਕੰਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ।
2: ਅੱਛਾ
3: ਵੀ ਚਲੇ ਪੋਣਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਜੋ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਿੰਜੀਆਂ ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਦੇ।
2: ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਟੋਰੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਈਆਂ?
3: ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੱਥੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਅਰਕ ਪਾਇਆ।
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂ।
2: ਅੱਛਾ
3: ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਤੀ, ਫਿਰ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਏ ਹਾਂ।
2: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਲ ਤੁਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਕੁਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਈ ਕੇ?
3: ਇਹ ਸੇਲ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬਲੋਕ ਚ
4: प्राकृतिक
2: विधि करना पूरी जड़ी बूटियां करना नोने वाला साबुन भी जड़ा से तो हां तैयार करा कर दिया ना।
4: हां जी हां जी
2: जी तो इस ताईया तो हां कुती पहले ट्रेनिंगा वगैरह भी लेनिया कुती सिखया कुतु ये काम तो हां
4: ए ट्रेनिंग ले या हां मतलब कि लेडीज थी ब्लॉक नगरोटा सुरेंद्र नाना पंचायत दे करते थे काम से।
2: हां जी
4: तीने यहां सद्या मतलब अपने कार्य सद्या मैं मिलया हां जो भी दिया ट्रेनिंग वहां भी ये काम शुरू करना।
2: अच्छा
4: क्योंकि पहले हां तुलसी वगैरह नहीं लगाई थी पिछले साल तो इस करके हार हां मतलब आर्क वगैरह जी अगर सब कुछ खरीदना पवे ता तो फिर बड़ा महंगा काम है।
2: हां जी हां जी
4: क्योंकि साबने का बेस होता सभी खरीदना पौंदा हां जो
2: जी बिल्कुल
4: कने और मैं सारी महिलाएं जानकारी दिंदी कि जिया साडा ब्लॉक नगरोटा सूरियां दा ते इथों फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है मतलब सेंटर गवर्नमेंट ते अपॉइंट लोग ने तिथु तो सारे किसान जुड़े हां ते तिथु हां जो चीजा हां मतलब की अपनी जड़ी भी हां उगा दे तिथु सेल आउट करी सकदे पर सारी ऑर्गेनिक तरीके ने होन ता।
2: अच्छा
4: तुलसी भी तीना खरीदी लेनी कैमोमाइल लगा दे अच करा हां
2: सभी
4: तीना खरीदी लेना हल्दी है सभी तीना खरीदी लेनी हर चीज जड़ी हर्बल चीज होंगी सब तीना खरीदी लेनी मतलब की एक ता हां सेल करने दी कोई प्रॉब्लम नहीं दे।
2: हां जी
4: मैंने दूसरा है की जिन्होंने जुड़ी के हां जो है की मतलब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है
2: जी
4: ना खुद ही मार्केटिंग करनी उन साबन है हाड़ा था सेट साबन जड़ा से मैं टेस्टिंग वास्ते दे थे तीन हाल हाड़े हुई है चार पांच दिन निकले हो साबन है मतलब टेस्टिंग होता साबन हाड़ा पे ही ऑर्गेनिक है कि कुछ हाँ केमिकल के नहीं मिक्स किता।
2: हाँ जी हाँ जी
4: जड़ा सारा अदर स्टेटा भी जाई के सेल होना मतलब से हाँ सेल करना से सीधे खुद एफ बी वाले सेल करना मतलब जो फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है ब्लॉक नगरोटा सूरिया दे तीना सेल करना।
2: अच्छा यानी कि इसने तो हाँ जो आसानी हुई यानी तो हाँ वाल जितना भी उत्पाद होगा तो हाँ तीन ये देना अगे जड़ा सा तीन बेचना है
4: तीना सेल करना अगे तीना बेचना अगे जाके लोकल मार्केट है मतलब जिया हाँ लोकल सेल करा दे सा ता मतलब जिया डिमांड आई जंदी ता हाँ कर तैयार करी दे जिया जिसी चाहिए होगा साबण अज बोले दस ता हाँ कल तीन सवेरे तैयार करके दे देना।
2: अच्छा
4: हाँ जी अपने लोकल तीन सेल करा दे
2: जी जिया औषधि पौधे दसिया तुलसी है इससे सोगी और कौन कौन पौधे लगाए ना
4: मतलब तुलसी है अश्वगंधा अश्वगंधा सर्पगंधा इन्हां दी जड़ां जड़ियां ना सह फेल होंदियां।
2: अच्छा
4: हां जी इन्हां दी जड़ां कटनियां जलू मतलब पत्ते भी हो जांदे पर ज्यादा जड़ी कीमत है जड़ां दी मिलदी इन्हां दी।
2: अच्छा
4: बाकी साडा इह कम चलिया औषधी पौधियां पर चलिया मैं तां बोलदी कि जनानी जड़ा घर बैठी के काम है औषधी पौधियां दा करना।
2: बिल्कुल हां जी
4: कने इस विच पंचायत जड़ी है ब्लॉक जड़े से बड़ी हेल्प करा दे।
2: अच्छा शिफाली जी इससे बाद जियां गल करदे ने इससे सोगी जियां औषधी पौधे तो हां जड़े से लगा करदे ने सोगी जियां कुछ और फलाने पौधे भी लगाए जियां बागवानी दी गल करिए दा
4: सर बागवानी जड़ी से बड़ी ज्यादा नहीं अपने यहाँ घरे तक की जिया मतलब हर दो दो तीन तीन पेड़ है सब कैसी दे जिया अमरूद संतरे अंब।
2: अच्छा जी कुनी औषधीय पौधे अगर लगाने होन या तोहां ते लैने होन ता तिना जो पौध कुतु मिलला है कुतु संपर्क करन जेड़े तोहां जो

0: करते ने सवेले।
1: सर मतलब कि हर ब्लॉक से जड़ी से नर्सरी दी हो, मतलब कि पूरे ब्लॉक से दो दो नर्सरियां ना,
0: हाँ जी
1: जड़े औषधि प्लांट ने सत्ती नहीं उगाने, मतलब कि हर कोई नहीं उगा सकता, मतलब बेंडर बंदे एक बेंडर टाइप होंदा
0: हाँ जी।
1: सत्ती नहीं सेल आउट करनी जड़े नर्सरी लगाने थी ना।
0: अच्छा, यानी कि अगर कुसी यो औषधीय पौधे अगर चाहिए हो तो सर अपने ब्लॉक से संपर्क करने की दसा भाई,
1: हाँ
0: हाड़े
1: जी
0: ब्लॉक से औषधीय पौधे को तो मिल सकते हैं। शिफाले जी, इसके बाद तो हाँ जड़ा सह अहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है जड़े की नौकरी पीछे ता ता घूमा कर दे कने देखा नौकरियां नहीं भी मिला कर दी हैं, तिने
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ जी तीने तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि तू हाँ औषधि पौधे लगाओ,
0: हाँ जी
1: कहना तीने सेल करा तीने अपने तरीके ने, आज उन ता मतलब शैम्पू खुद बिल्कुल प्राकृतिक तरीके ने शैम्पू बनाना भी दस्ता दे, अचार पाना भी दस्ता दे, हर चीज दस्ता दे, एक बंदे काम करने का पता होना चाहिए कि मैं ये काम करना, मैं लाइन लैनी है। हूं मैं काम कर रही तो मैं कली नहीं रोजगार ला मैं अपने ने पांच और भी जोड़िया, कहने शायद हाँ कुछ और काम करना तो इससे पांच और भी तक, मतलब इससे जरा से घर बैठी जड़ी बेरोजगार लेडीज ने तीने भी काम मिलना था, उसे जाने की जरूरत भी नहीं कि हाँ जो कुछ मेहनत करना, हाँ बाहर जाना कमाना, अपने घर बैठे के आराम में ने कम करना, अरे एक जगह इकट्ठे होके काम करना सा।
0: जी शिफाली जी, ग्रां कटोरा नगोटा सूरिया दे तोहां अहां कने आकाशवाणी धर्मशाला दे टियारे पर इत तोहां जुड़े, अपना कीमती समय तोहां अहां जो दिता तोहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान साथियों, ये भेंट वार्ता दे अंक दी जानकारी तुहां तक पुजाई कने उन टियाले पर बेला ओदा स्थानीय सब्जी मंडी दे संभावित थोक मोल भाव जड़े रे।
3: जी तो बिल्कुल, अज गल करिए तो अज आलू रिया 12 से 22 रुपये, प्याज 52 से 54 रुपये, टमाटर 24 से 28 रुपये, लसुण 200 से 230 रुपये, अदरक 100 से 130 रुपये, शिमला मिर्च 65 से 70, अरबी 28 से 30 रुपये, खीरा 40 से 45, कन्ने मटर 150 से 160 रुपये, फूल गोभी 50 से 55 रुपये, बंद गोभी 22 से 28, बैंगन 22 से 25 रुपये, कद्दू 15 से 25, मूली 30 से 40 रुपये, कने पालक रहा अज कांगड़ा सब्जी मंडी विच 48 से 50 रुपये, हरी मिर्च 56 से 65 रुपये, धनिया रहा 150 से 200, तोरी 15 से 20 रुपये, भिंडी 25 से 30, घिया 15 से 30, करेला 25 से 30, फ्रांस बीन 50 से 60, गाजर रही थोड़ी 30 से 35, कन्ने मशरूम 190 से 200, गंडियाली 25 से 30 रुपये।
2: जी, तो हुण फलां दी गल करिए तो सब तो पहले सेब दी गल करदे ना। हाँ, ताई सेब जिहड़ा रिहा सै अज मंडी च 40 से 110 रुपये प्रति किलो, कने केला जिहड़ा किसान साथी हो तुसीं उह भाव मिलना 40 से 50 रुपये प्रति दर्जन, कने अनार जिहड़ा सै 50 से 120, अनानास किसान साथियों 40 से 45, अमरूद की गल करिए वधिया भाव मिला था 100 से 120 रुपये, मौसमी की गल करिए मौसमी कने पपीता एक ही भाव जिहड़ा रहा 40 से 50 दूनी हो, संतरा जिहड़ा सै 100 से 120
3: जी,
2: कने नींबू 160 से 170, कने नाशपाती तुहांदी 50 से 70, कने कीवी पर पीस महंगा हो गया थोड़ा जिहा 40 से 45, कने माल्टा जिहड़ा तुहाड़ा जाई रहा 170 से 180 रुपये प्रति किलो, है ना
3: जी। तो देखा लोका बहुआ तुहां वल कांगड़ा मंडी दे जिहड़े थोक भाव से पजाई तेन, कने ये थोक भाव दसना भी जरूरी होंदे जो कि अजकल जी देखा। हाँ पहले भी गल आई इतने भी खीरे कद्दू कई कुछ साग सब्जियां किसान लगाइया ने,
2: बिल्कुल जी बिल्कुल।
3: इतनी मात्रा च भी कई बार अच्छी फसल हो जाती बी, आपू तो खाई लेंदे रिश्तेदार भी दे दें फिर बची जाती, तो चलो दिखा हाँ दिखा तुहां टियाले ते बुले पहां जा दे, तो जेडे हाँ दे भाई बंधु है सियाने बुजुर्ग न सड़क के कंडे कंडे बैठे हो,
2: बिल्कुल तेने मंडी जाने जरूरत ही नहीं है, सहत अपने देसी करा दे कने हाथों हाथ ही तेना दे जेडे इनसे उत्पाद बिकी जा दे ना।
3: तू ही कने करे ग्राए बिच बोले करे ते बोले कन्ने ही घाटली बार तुहां जे सब्जी रखी थी होंगी ना देसी, तो ते तू ते गड्डियां लंघा दियां, कने जेड़ा रेट मंगा दे तीस रेटे पर सै चीज दे दे, कने खासियत देसी चीजा की यही है बई अपने सामने तैयार हुई हैं ना, इन्होंने कोई दवाई का उपयोग होया, तो लोग ये विश्वास करके जड़ा बोलते मुल दस गए तो इस ले लेंगे।
2: बिल्कुल, कने सब्जी मंडी का सह रुख करते जिन्हें जरा सह खेतीबाड़ी बड़े स्तर पर अहां दे किसान भाई करते हैं, है ना
3: जी,
2: कमर्शियल तौर पर जड़े करते हैं, तो तेना जरूरी हो जाता कि कुसा फसलों का भाव जरा सह क्या चलिया, तो तेना दसना जरा सह जरूरी होता है ना
3: जी।
2: तो अगर ताई हूँ मौसम की गल करिए तो आने वाले 2-3 दिन जरा दसा दे कि मौसम खराब ही रहना, कुथी कुथी जरा सह बरखा बुछारा हो सकती है, कने कुथी कुथी जरा सह बरखा जरा सह हो सकती है ना, तो थोड़े दे अहां दे किसान जड़े सह थोड़े चिंतित भी है, कुछ बोला दे कि धन आयो बी सेड़ भी चाहिए है ना,
3: बिल्कुल पुरानियां गल्ला बनियां ना बोलदे पे इयां, तो चलो बरखा चाहिदी चाहिदी फसल आयो, पर चल बड़ाइयां बड़ूइयां दी गल करना लगी है ना, तिना दिना च थोड़ा देया ए किसान ए परेशान भी करदा है परमात्मा भई परीक्षा भी लैंदा बोलदे ना।
2: हां जी हां जी ठीक गला दे तुहां, तां ज्यादा ही परीक्षा नहीं ना ले लै साडे किसानां दी,
3: बिल्कुल ऐसा बोलदे होना नहीं चाहिदा, क्योंकि इस वक्त

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल को अगले वर्ष तक बनाया जाएगा आत्मनिर्भर राज्य। मुख्यमंत्री ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को दी 238 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही होगी ऑनलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर लिया बड़ा फैसला। 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई वेतन सीमा। और वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वविद्यालयों से प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने आज सोलन में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के एक कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र को संबोधित किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है और सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल अगले वर्ष तक आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा।
1: जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने एक निश्चय किया था कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। यही परिणाम है कि आज हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है और जीत जीती है। 2027 तक हमारा प्रयास है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और इस लड़ाई को आत्मनिर्भर की लड़ाई को लड़ने के लिए अभी हमें बीबीएमबी का जो एरियर है जिससे कि 500 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है उसका जजमेंट रिजर्व है उसका इंतजार कर रहे हैं। वाटर सेस का इंतजार कर रहे हैं और शानन प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये जो पानी है यही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके और सभी प्रकार की आय से तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपया हमने बचाया।
0: बाद में मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के सराह में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले के समापन समारोह में शिरकत की और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 238 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सीमा पर बनने वाले किशाऊ बांध के विस्थापितों के हितों की रक्षा की जाएगी और उनकी मांगे पूरी होने के बाद ही विस्थापन किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बांध से हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड राज्य के अधिक लोग विस्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को योजना की शुरुआत की थी और देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है।
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
0: हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला के निकट डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासनिक संस्थान में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इससे बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 90% क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है और गांवों के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन के हिमाचल संयोजक नरेंद्र शर्मा ने आज शिमला में बताया कि इस दौरान सभी बैंक अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मी मुख्य रूप से 5-डे वीक लागू करने और PLI योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं।

0: @_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
2: माया, ये वैक्सीनों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
1: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
2: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
3: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

0: स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त

0: राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने और फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अपने पौने चार वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्य के हजारों लोगों ने पेयजल योजनाओं के लिए अपनी जमीनें दी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों पर झूठे केस बनाकर FIR दर्ज की जा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल को कोई सरकार नहीं बल्कि एक छात्र संगठन चला रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी और अपने चहेतों की शानो शौकत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसे जनता को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर खर्च से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कर्ज में डूबे प्रदेश में 15 लाख की टेबल और 10,000 रुपए प्रति मीटर पर्दे की फिजूल खर्ची पर सवाल उठना जायज है। दूसरी ओर हमीरपुर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी निशांत शर्मा ने कहा है कि राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मजबूती से काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बद्दी की एक प्रख्यात निजी कंपनी के सहयोग से सोलन जिले के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सायरी में आज एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें 30 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 600 से अधिक लोगों की चिकित्सा जांच की। खंड चिकित्सा अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान मुख्य रूप से महिलाओं में कैंसर जांच के लिए मैमोग्राफी परीक्षण किया गया और आंखों व हड्डियों की जांच भी की गई। इस दौरान संस्था की ओर से लोगों को 400 से अधिक निशुल्क चश्मे और अन्य चिकित्सा उपकरण भी बांटे गए। काहला पंचायत के प्रधान राजेश ठाकुर और सायरी के प्रधान वीरेंद्र जसवाल ने शिविर के सफल आयोजन के लिए संस्था का आभार जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल को अगले वर्ष तक बनाया जाएगा आत्मनिर्भर राज्य। मुख्यमंत्री ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को दी 238 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही होगी ऑनलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर लिया बड़ा फैसला, 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई वेतन सीमा। और वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जानें।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचारों में आइए सुनते हैं एक अधिसूचना। नवोदय विद्यालय समिति, जो कि शिक्षा व साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत सत्र 2027-28 के लिए देश के प्रत्येक जिले के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की खाली सीटों के लिए 10 अप्रैल 2027 को लेटरल एंट्री परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की

0: अंतिम तिथि 30/9/2026 है। विवरण पत्रिका यानी प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक्स पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 के लिए https://cbseits.nic.in/2026nvsix9 और कक्षा 11 के लिए https://cbseits.nic.in/2026nvsxi11। एक बार फिर से सुन लीजिए, कक्षा 9 के लिए https://cbseits.nic.in/2026nvsix9 और कक्षा 11 के लिए https://cbseits.nic.in/2026nvsxi11। अधिसूचना समाप्त हुई।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रोग्राम है मिले जुले गीतों का।

दिलजीत दोसांझ का गाया ये पंजाबी गीत अभी आप सुन रहे थे। अब लीजिए सुनिए फाल्गुनी पाठक को, ललित सेन का संगीत इस गाने में है।

मिले जुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब एक गजल आपको सुनवा रहे हैं, आवाज पंकज उदास की।

रात्रि के 8:15 और 2 सेकंड हुए हैं। आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम सुन रहे हैं सबरस।

हरजीत हरमन को अभी आपने इस पंजाबी गीत में सुना और अब एक एल्बम गाना आपको सुनवा रहे हैं। एल्बम है तन्हा दिल। इस गीत में आवाज शान की है। मिले जुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: देश प्यार के गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या रात 9 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय,

0: और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी वो पूरा सब कुछ संभाल सकता है। तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

0: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
1: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
3: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress. Highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticizes those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elangovan bags bronze in women's pole vault. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said, Vikasit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
6: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
5: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. He said this transformation is visible across sectors. The Prime Minister said Make in India is about creating infrastructure, enterprise, and innovation that allow India to grow and prosper. The government has said that 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana, DDU-GKY 2.0. The Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana is a centrally sponsored scheme providing placement-linked skill training to poor rural youth. The duration of the training varies from 3 months to 12 months. Rural Development Ministry said that all the 31 participating states and UTs have been allocated more than 9 lakh targets under the scheme for the 2-year period. This is Akashwani giving you the news.
2: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
5: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into creation of the post of Chief of Defence Staff.
7: Earlier, India's three armed services, Army, Navy and the Air Force, planned, trained, procured and advised the government separately. Proposals for greater jointness had been made repeatedly since the Kargil Review Committee of 1999 and the group of ministers that followed it, but no single officer held authority across all three services. On the 15th of August 2019, Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day address, announced the creation of the post of Chief of Defence Staff from the Ramparts of the Red Fort.
8: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा. हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है.
7: द कैबिनेट अप्रूव्ड द डिसीजन इन दिसंबर 2019 अलोंग विद अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द CDS टू हेड. टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सेड द अपॉइंटमेंट ऑफ CDS मेड इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू हैव वन पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर एडवाइस ऑन ऑल मिलिट्री मैटर्स.
9: द अपॉइंटमेंट टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेड इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू हैव वन point contact for advice on all matters related to military. Besides being the Chief of Defence Staff, he is also Secretary of Military Affairs. He is a one-point contact, one-point advisor to the Defence Minister, and of course in the security this meet whenever the Prime Minister wishes to, the Defence Minister wishes to. At any point of time, they require advice, they need some kind of input, just one-point contact for all the three services, and that is the Chief of Defence Staff. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
7: After formation of the post of CDS, all the three forces have now got effective leadership at the top level. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
5: The centre has extended the Armed Forces Special Powers Act 1958 in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for a period of 6 months with effect from the 1st of October. In Manipur, the Ministry of Home Affairs extended AFSPA in the entire state, excluding the areas falling under the jurisdiction of 13 police stations. In Nagaland, AFSPA has been extended in 9 districts. These districts are Dimapur, Niuland, Chomoi, Kedima, Mon, Khipire, Noklak, Phek, Peren and Meluri. In Arunachal Pradesh, AFSPA has been extended in Tirap, Changlang and Longding districts and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chaukham police stations in Namsai district.

एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोता इस समय सुन रहे हैं और आज की फिल्म है मैंने प्यार क्यों किया। ये फिल्म 2005 में बनी हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड धवन द्वारा किया गया। सलमान खान, सुष्मिता सेन, कैटरीना कैफ और सुहेल खान इसमें प्रमुख भूमिकाओं में हैं। अर्शद वारसी, बीना काक, राजपाल यादव और ईशा कोप्पिकर सहायक भूमिकाओं में नजर आए।

मैंने प्यार क्यों किया, इस फिल्म के गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता आज सुन रहे हैं। और श्रोता आपको बता दें कि ये कैटरीना कैफ की पहली फिल्म है। इस फिल्म के सभी गीत समीर द्वारा लिखित हैं और संगीत हेमेश रेशमिया ने दिया है।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम कारवां सुरों का।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए परदेश फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

कारवां सुरों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हैरिस जयराज के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए बॉम्बे जयश्री को। फिल्म है रहना है तेरे दिल में।

रात्रि के 9:47 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कारवां सुरों का। तुम बिन फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। गीत ये वो लिखे हैं फैज अनवर ने, संगीत निखिल विनेकर, गायक कलाकार अभिजीत और के एस चित्रा।

साथिया फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम कारवां सुरों का यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही पलों में एशियाई खेल 2026 की हाइलाइट्स रिले की जाएंगी।

0: IT Nagoya.
1: Far away in the land of the rising sun, the Indian contingent is striving hard to make a billion Indians proud of their outstanding performances. Hello and welcome to the daily Asian Games Aichi Nagoya recap only on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Here are the main headlines of the day. Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidambar and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000-meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Mandwal with all the details.
2: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions in individual final, finishing 5th. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the 8th place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
3: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
4: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
3: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन योशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारत के वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
3: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
3: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elhamra Zord, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
4: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है. पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया. पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी. सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा. अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई. भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. अब उनके सामने जापान के शुनसुके किटामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी. प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली. यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया.
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
3: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी. निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही.
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final.

0: clocking 1:40.308. Then they competed in the final B, where they finished third among four pairs in 1:40.411. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished fourth among five pairs with a timing of 2:08.306 and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1:45.670. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। एशिया स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Ambrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samai Rabu, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
3: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
0: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
0: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेटलिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place with Ashish Chaudhary, Tilotama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Josh Sachinappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Jindapal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's short put final, while Praveen Chitrabal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400 meter final in athletics, with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400 meter final. And athletics action ends with the women's 1500 meter final, with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton with its men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as esports. That's it from us at Akashwani, as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2026. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: again, dear listeners, and thank you for staying tuned to FM Rainbow 102.6 MHz. I'm Lipi Kadas with tonight's session of The Weekender. Well, The Weekend is here officially, and for the next 40 minutes, we bring you an uninterrupted play.
1: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए बॉलीवुड बीट्स।

की एंड का फिल्म का गाना ये अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रदर्स जैज और अदिति शर्मा की मिली जुली आवाज़ों में। गीत के लिए संगीत हनी सिंह और मीत ब्रदर्स का था। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने। अगला गाना लीजिए सुनिए कबीर सिंह फिल्म से।

बॉलीवुड बीट्स के अंतर्गत नई फिल्मों के गाने अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये गाना अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना। आर डी वर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल, और देवानंद जीनत आमान पर ये गाना फिल्माया गया था, और इस फिल्म के निर्देशक थे गोगी आनंद। लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वरों में अब लीजिए सुनिए चोरी चोरी फिल्म का ये गाना। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र की बोल हैं।

पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र पर संगीत के अंतर्गत। रात्रि के 10:39 और 44 सेकंड आपने ट्यून इन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

Did the time.

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जानवर फिल्म का गाना लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जय के।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में लाल बंगला फिल्म का ये गाना भी आपने मुकेश की आवाज में सुना। कार्यक्रम के अंतिम पेशकश लीजिए सुनीलता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की गाई हुई। इस दो गाने के लिए संगीत शंकर जयकिशन का है। जंगली फिल्म से ये गाना हमने लिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र पर संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव

गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2024 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।